जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज की लय इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। दिल वालों के सिवा मैं साथ सा प्रेम नमस्ते याद आप राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है वी फाउन एफएम चैनल पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए करीबन 12:02 व्यतीत हो चला है, यानी 2:12 व्यतीत हो चला है 12:00, और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाफ शहर से। बीमारे लाचारे तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनकी घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फाउन इंसानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे हमारे सहयोगी के जरिए, यहाँ से मैं हूँ आपका सहयोग गंगा और रहूँगा अब से करीबन शाम 3 बजे तक। पूर्ण आशा है आप हमारा साथ अवश्य देंगे। दौंदरदख नेक यूली है, दौंदरदख यानी गुरुवार बृहस्पतिवार 9 जुलाई है। आप तत्पर है जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ कार्यक्रम सुन रहे होंगे, आप सबका हृदय से स्वागत किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से और डायरेक्टली लेवल की तरफ से आपकी खुश आमदीद, हृदय से स्वागत है। बाहर का मौसम तो बहुत प्यारा है जहाँ तक सुनने में आया, काज ज़्यादा गर्मी होगी। बहरहाल आप तत्पर हैं और काम भी कर रहे होंगे, काम पर होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, कहीं भी होंगे, कार्यक्रम सुन रहे हैं, फिर से स्वागत किया जा रहा है। तो लीजिए पहला सिलेक्शन हम पेश कर रहे हैं आपके लिए, बस इससे आप लुत्फ उठाइए।

हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, ये शानदार गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, देखते हैं तो इस तरह से, हाँ अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ तो ये है इस तरह से, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नई गिनती फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैथ मुकेश, द हार्ट ऑफ अ मिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर मैं थी मुकेश, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकती ए ने सही फिल्म का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
2: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
2: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: हाँ? किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
2: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
2: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारीख गवाह है, यानी खुशकी दिन इतिहास गवाह है। अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। आओ, ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेकदिन सस्त सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाएं। चलिए, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बीस बीसी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाएं, निखती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। दिन से ही फिर कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओ पी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेत हमने पेश की ऊपर फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकली निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और वो ये गीत है, इस तरह से आ रहा है।

अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, ये शानदार दिवत पेश हुआ फुरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं। और मैं दरहाक शहर से ये गीत चला रहा हूँ सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए। चलो देखते हैं, सेलनाथ फ्लिसंग के रहने वाली श्रीमती आनी सरजुमी सिर और उनके पति ज्योति सरजुमी सिर कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने तार की और ऐप की भी। आप दोनों को बहुत बहुत प्यार भेजा जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। चलिए तो आपके लिए हम ये गीत चलाते हैं, इस तरह से कहाँ गया मेरा गीत, हाँ मिल गया। सेलांग फ्लिसिंग के रहने वाले श्रीमान और श्रीमती आनी और ज्योति सरजुमी सिर जी के लिए इस ये गीत।

रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाया गया फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हम देख रहे हैं फिल्म सूरज और चंदा। फिल्म सूरज और चंदा में से निकाले हैं ये शानदार गीत हमने पेश की निकतिन द्रियन सेवन तक का। और ये गीत पेश हुआ ओवर फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि सेलम फ्लिसिंग के रहने वाले आनी सरजू मिश्र जी और ज्योति सरजू मिश्र जी दोनों शुभकामना के साथ ये शानदार गीत हमने पेश किए उन लोगों के लिए। आनी जी और ज्योतिष जी आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म मेहंदी लगी तेरे हाथ और ये नहीं नहीं मेहंदी लगे मेरे हाथ, हाँ मेहंदी लगी मेरे हाथ 1962 का ये फिल्म लिखी थी तुए सस्त का ये फिल्म है और हमने ये गीत पेश की आपके लिए सभी श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये भी एक लंबा चौड़ा गीत है। जी हाँ चलो सुनते हवा हवाई।

हवा हवाई फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया और गाने वाली थी कविता कृष्णमूर्ति जी। तो ये तो आजकल की कैबरी है ना, जो आजकल चल रहा है उससे पहले की कैबरी थी ये। चलिए हम उससे पहले की यानी सिद्धार्थ शास्त्र का गीत आपको सुनाते हैं और देख रहे हैं कि गंगा जमुना में किस तरह से वैजयंती माला ये गीत एक्ट की है और अपनी नृत्य पेश की है।

वाह क्या बात है, गंगा जमुना में से हम आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और ये उस ज़माने के गीत था यानी सस्त ख्यार का, गंगा जमुना में से निकाले हैं नौशाद अली के साज पर। चलिए उसी फिल्म में से एक बार हम आपको सुनाते हैं, जी नहीं, ये मदर इंडिया का है, ये मदर इंडिया का है उन दिनों की।

वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे धीरे हाँ करे शमशाद बेगम, और साथ ही नौशाद अली के साज पर ये गीत चला। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम निगेटिव 75 तक का ये गीत और फिल्म मदर इंडिया में से निकाले। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मदर इंडिया पहली फिल्म थी थिएटर द पारल में निगेटिव 75 तक में जब चला बॉलीवुड का। उससे पहले नॉन हिंदी फिल्म चला था ये मुझे नहीं मालूम, कोई अमेरिकन फिल्म या फ्रांस फिल्म था। बहरहाल हिंदी फिल्म पहला फिल्म था मदर इंडिया जो द पारल में चलाया गया, पर चलाया गया सूरीनाम देश में निगेटिव 75 तक में।

दगा दगा वही वही ये शानदार गीत चला ऊपर पावन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की इस तरह से। लोग पूछ रहे थे गंगा जी आपने कितनी सीफ ने फाइफ तक की बात कर रहे थे यात्रा दपाल का पहला फिल्म, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने हिंदी फिल्म सबसे पहले कभी कहाँ देखा है, तो हमने पहला फिल्म देखा है 1983 साल में देखे हैं और वो था फिल्म आवारा, और उसके बाद टेटन में देखे हैं तो स्वर्धन उफुम ब्रक्सर क्या नाम है लुक्सोर में देखे हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 टेटन में देखे हैं, उससे पहले रेक रियासी साल में देखे थे। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो इस तरह से है।

फिल्म धर्मात्मा में से निकाले हैं मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और कंचन जी निकती फैफ से दिखाइए गीत हम आपको सुना है शाम के इस तरह से कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है लता जी है रफ़ी साहब की आवाज़ में साथ साथ दे रहे हैं।

फिल्म वारिस में से आरती बर्मन के साथ पर रफ़ी साहब और लता जी, इन दोनों की आवाज़ में हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और लीजिए एक बार फिर, जी हाँ,

झूम के गायों आज मेरे दिल। जी हाँ, फिल्म देखते हैं, कौन सा फिल्म था, चंडिका तो नहीं है, बहरहाल इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं, बहरहाल गीत हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, इसका फिल्म तो मालूम है ज़रूर, फिल्म रोटी। फिल्म रोटी में से निकाल रहे हैं नीग तीन फिरन सैफन तक, 1974 का ये गीत इस तरह से है, एवरग्रीन किशोर कुमार।

नाच मेरी बुलबुल, जी हाँ पैसा मिलेगा, एवरग्रीन किशोर कुमार। लेकिन फिर से फिर तक ये फिल्म रोटी में से निकालने हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत, जी हाँ अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

उदित नारायण और अलका जी मिल के आपको सुनाए ये प्यारा दुबैत हमने पेश किया ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं दनाक शहर से ये चला रहा हूँ। चलो देखते हैं नदीम श्रवण के साज पर, ट्वीट का ये फिल्म है नदीम श्रवण के साज पर। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ले चलते पुराने ज़माने में भी चलते, उन दिनों नाच गाना धूम धड़ाके से किस तरह से होता था, चलो सुनते हैं इस तरह से।

कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, लता जी की आवाज़ में सुनाया गया। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है, काम के कार्यक्रम है तो लीजिए।

चली रे गोरी पनिया भरन को, एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी शाम के कार्यक्रम में आपको सुनाए हैं। और घड़ी पे देखूं तो करीबन 15 मिनट बाकी है जी, ना 14 मिनट हो गया, 14 मिनट बाकी 3 बजने में। और थोड़ी देर के बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको ये सुनाते हैं इस तरह से।

कसमें हम अपने खा के हम आपको सुनाएंगे शानदार गीत। पेश हुआ ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि 13 मिनट बाकी है 3 बजने में। लेकिन आपको बता दूं, अम्स्टरडम के रहने वाले श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा, उनकी धर्मपत्नी वती जोधा, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये भी ये लोग भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, वैसे तो वो लोग और लोग सुन रहे हैं, लेकिन पता नहीं लगता है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं। अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा होगा। बहरहाल चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा और उनकी धर्मपत्नी वती जोधा के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ दिन पेश करते हुए। चलिए हीरा जी और वती जी।

वाह क्या बात है। देखते हैं लता जी, और द मैन विद गुड वॉइस तलत साहब, आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और ये विशेषकर हमने पेश की अमस्टरडम के रहने वाले श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा और वती जोधा के लिए एक शुभ दिन पेश करते हुए। एक आखिरी गीत चला रहा हूँ, इस गीत के बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।

यहाँ तक था जो कार्यक्रम हमने पेश किया आज शाम द्वंद्व रखने 1 जुलाई का। इस उम्मीद के साथ आपको पसंद आया होगा। और तार किए हैं सेलान से श्रीमती आनी सरजू मिश्र जी और उनके पति ज्योति सरजू मिश्र जी, उन दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और अम्सरधाम के रहने वाले हीरा प्रसाद जोधा और उनकी धर्मपत्नी वती जोधा, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। दोनों परिवारों को शुभकामना के साथ ये कार्यक्रम हमने पेश की उनके लिए ये गीत। और चलिए मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला जोंदा यानी रविवार रात 8 बजे 8 से 10 गीत गज़ल के कार्यक्रम में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, सोंदा तक आप सबको एक शुभ वीकेंड। और वीकेंड के आखिरी दिन तो हम मिलेंगे ही, और जो बचे दिन हैं इस सप्ताह में आप आनंद उठाइए, लुत्फ उठाइए। और मेरे बाद आप सुनेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद सभी सहयोगी मिलके आपके सेवा में रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको एक शुभ शाम।

और आपकी आ जाने से बहुत कुछ हो जाता है हमारे यार। तो दोस्तों और आगे गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारे चलते हैं कि कभी उदास हो जाओ, कभी उदास हो जाओ तो बताना मुझे, फिर से अपना दिल देने, फिर से अपना दिल देंगे तुम्हें खेलने के लिए। क्या हमारा दिल खिलौना है दोस्तों कि खेलेंगे, और तेरे साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरे हर मुस्कान से मिलने मुझे खुशी है, मुस्कुराता रहना इसी तरह हमेशा, क्यों तेरे ही मुस्कान में मेरी जान बसी है।

और आशा भोसले किशोर कुमार का गाया हुआ सीन है। फिल्म के नाम है ये वादा रहा। कौन कहता है ताजमहल बनाने के लिए, ताजमहल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती, ताजमहल बहाने के लिए दौलत नहीं मिलती, मगर मोहब्बत करने के लिए मुमताज नहीं मिलती। दोस्तों कि कहते हैं नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताऊं इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार ही करना।

और जरा फिर से, और जरा फिर से कहना, और क्या कहना है हमारे यारो, आपको क्या कहना है, सोच मिलने चाहिए, दिल तो अपने आप ही मिल जाते हैं, तो शक ना कर मेरी जज्बातों पे, तेरे साथ ही जिंदगी मेरी खूबसूरत है, जितने इमायत है पानी की, मरते इंसान के लिए बस उतने ही मुझे तेरी तेरी जरूरत है।

और क्या आप भी कभी भूला है और कभी याद किया है, लेकिन गलती मत करना दोस्तों कि गलती उनकी नहीं, कसूरवार मेरी गरीबी थी। दोस्तों हम अपनी औकात भूल कर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे, तो ये बात है कि कभी भूला कभी याद किया, तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो खुशियों की पैगाम की तरह, हमने कब भुलाया है आपको, तुम याद रहते हो मुझे मेरे नाम की तरह। तो किताबों में क्या है,

0: ये पर्दा हटा दो।
1: और दोस्तों ये सब गीतों का महान प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं, है ये गीत जो है आपको जरूर सुनना चाहिए।
2: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैक्स टच।

और व्हाट इज योर मोबाइल नंबर सोनी निगम का यानी का ये गीत है हसीना मान जाएंगी, हसीना मान जाएंगी कि बिन आपके कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ पल की जुदाई भी सही नहीं जाती, तुम खुद ही समझ लो और तुम खुद ही समझ लो और प्यार की लिख कर ये बात मुझे कहीं नहीं जाती, लिख कर ये बात मुझे कहीं

और प्यार कर ले और कर ले हमारी गोरी, और ये गोरा रंग जो आपकी है वो एक दिन उतर जाएगा। कि कहते हैं जब आपका नाम जुबान पर आता है, जब आपका नाम जुबान पर आता है, पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है। है तसल्ली होता है मन को, कोई तो है अपना जो हंसते हुए हर वक्त याद आता है। तो है अपना ना दिल, तो अपना दिल जो है दोस्तों तो वो तो आवारा होता है ना भाई। तो आप लोग को फिर कहते हैं कि दिल जब आवारा होता है तो उसको जोर से पकड़ना है। कि हेमंत कुमार आपको क्या कहते हैं, हेमंत कुमार आपको क्या कहते हैं, जब आपका दिल भटकता है तो आओ मिलकर जुना जाए।

है अपना दिल तो आवारा है और जो ना जाने तो किस पे वो आ गया है कि कहते हैं दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दिल हो प्यासा तो पानी से गुजरा नहीं होता, कोई देखे तो हमारी बेबसी हम सब के हो जाते हैं पर कोई हमारा नहीं होता। ऐ दोस्त मैं तेरी खुशियाँ बांटते शायद ना सकूं, हाँ ये वादा रहा जब गम आए तो कबर खबर कर देना, सारे के सारे ले आऊंगा। तो और हम चलते हैं प्यार से भी ज़्यादा तुझे हम चाहते हैं। आशा जी और मोहम्मद अजीज़ इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए हमारे यारो सुनने वालों। इस गीत को मूवी का नाम है इलाका फन 1989।

0: और प्यार से भी ज्यादा तुझे हम और क्या करते हैं दोस्तों, प्यार करते हैं ना, कि मेरी आंखों भी मुझसे एक दिन ये कह देंगी कि ख्वाब उसकी ना देखो करो, हमसे अब रोया नहीं जाता। मेरी आंखें भी मुझसे एक दिन ये कह देंगी कि ख्वाब उसकी ना देखो देखा करो, हमसे अब रोया नहीं जाता। क्या कहूँ तुम्हें, ख्वाब कहूँ तो बिखर जाओगी, दिल कहूँ तो टूट जाओगी। तुम्हारे नाम जिंदगी रख देते हूँ मौत से पहले हमारे साथ ना छोड़ पाओगे। कि दोस्तों हम चलते हैं, मूवी का नाम है तीसरी मंदिर, जिसमें शमी कपूर, आशा परेख, प्रेम चोपड़ा, हेलेन ने काम किया है और ये बहुत मशहूर फिल्म थी एक जमाने में। और ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों इस गीत को आपको सुनना चाहिए, मूवी के नाम है तीसरी मंजिल।
1: मुड़ मुड़ कर देख रही हैं
0: और हम भी देख रहे हैं।
2: पीछे आप हैं, खास बात नहीं।
1: यूं ही देखती रहीं आप तो यूं ही चलते रहेंगे हम पीछे पीछे।
2: यूं ही चलते रहे हम तो रास्ता कौन देखेगा?
1: रास्ता देखने वाला जो है पीछे पीछे।
2: और अगर ठोकर लग गई तो गिरेगा कौन?
1: गिरने की बात कैसी, थामने वाला भी तो है पीछे पीछे।
2: अच्छा अब आइए साथ साथ चलें।
1: जी नहीं, हमारी यही जगह है पीछे पीछे।
2: पीछे पीछे पीछे पीछे, दीवाने तो नहीं हो गए आप?

और दीवाना, मुझसे मुझसा नहीं। और इस पीछे पीछे क्या होता है दोस्तों, पीछे पीछे और कुछ होता है तो आपको हम बताते हैं कितने लोग बहुत बेवफा होता है, और जो बेवफा होता है उसके लिए आपको हम जरूर कुछ बताएंगे कि बेवफा लोग को क्या करना चाहिए, कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला अगर हो तो फासला क्या है, हौसला अगर हो तो फासला क्या है, वो तो ज़दा देके दूर जाकर बैठे हैं, अब किसी से पूछो कि मेरा खता क्या है। दोस्तों सब कुछ भुला दिया, ये मेरी वफा का कैसा सिला दिया, सब कुछ भुला दिया, ये मेरी वफा का कैसा सिला दिया, मौत हमें आते नहीं और जिंदगी हम ये पते नहीं।

अगर आपकी आंखें किसी को देखे तो उसको क्या पता है कि उसका हाल क्या होता है। हमारे यारों की कहते हैं, रोए तो बहुत तेरी बेवफाई की बात, रोए तो बहुत तेरी बेवफाई की बात, तेरे याद ना गई तेरी जाने की बात। तुम हमेशा खुश रहना, तुम हमेशा खुश रहना, बस मेरे साथ किया ये एक वादा निभाने। और हम चलते हैं मैं चली परमाश्री मोहम्मद रफी नाइटिंगेल लता मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ सुना जाए।

और मैं चली ना, और मैं चली। और ये गीत है परमाश्री मोहम्मद रफी का और लता जी का, नैतिकी लता जी का ये जोंग है हमारे यारो। और इसके बाद और आगे का प्रोग्राम हम आपको जरूर शायद, तो हम चलते हैं और आगे को। हमारे यारो क्या कहते हैं कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, किसी को चाहो तो सच्चा दिल से, क्योंकि जिंदगी फिर कहां मिलते हैं, कहां मिलते हैं यारो। तो हम चलते हैं गीत की ओर, और गीत है आपकी करीब हम रहते हैं, तो हम चलते हैं इस गीत की ओर।

कभी शिकायत होती है हमारे यारो। और ये प्यार भरी गीत हम आपके लिए, और इससे गीत जो है दोस्तों ये है ओ मेरे दिल की चैन, जिसमें रजेश खन्ना ने काम किया है, किशोर कुमार, एक रोमांटिक फॉल प्यार भरी गीत है जो हम आप लोग को चलाते हैं।

और दोस्तों ये प्यार भरी गीत जो है और ये मस्त भरी गीत है किशोर जी के, किशोर दादा जी इस गीत को गाए है। ये

की जो है जो अब हम चलाने जाते हैं वो है काली काली काली काली यार लता जी का नाइटिंगेल। लता जी का ये सॉन्ग है, लता जी के सॉन्ग है कि मैं चाहूं सपनों में भी साथ उसका हूं, इन हाथों में मेरी बस हाथ उसका हूं, चाहत मुझे इतना है उसे कि दिल मानता नहीं, कोई मेरे बात उसको बता देते। तो हम चलते हैं काली काली राती और काली काली राती याद सताते हैं। तो इस गीत आओ मिलकर सुना जाए।

और काली काली रतिया ये याद सताते हैं, काली काली रतिया याद सताते हैं हमारे यारो और यारो, तो ये बात है हमारी काली काली रतिया के बारे में। तो कहते हैं हमारे यारो, क्या कहते हैं कि प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, चाह के भी आपको भुला न सकेंगे, चाह के भी आपको भुला न सकेंगे, आप ही हो मेरे लबों की हस्ती, आपसे बिछड़ जाने तो कभी मुस्कराना न सकेंगे। तो उलझन सुलझना की ओर हम चलते हैं।

कोई बता दे दिल है यहाँ और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्तराज के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली और कहाँ चली, आप तो अपने जानते हैं कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है। कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आपके दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है। तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेगे। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में और रोमांटिक हिट्स दोस्तों कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आप के साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम के ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आज़ाद का ये फिल्म नहीं खतीन 5/5 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहां, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

बसे ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां और आपके जुल्फों भी क्या इतनी सुंदर है हमारे दोस्तों। फिल्म तीसरी मंजिल का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग के सुनाया है और इसमें काम किया है शमी कपूर जी और हेलन जी और गाना को गाया है भाई आशा मोहम्मद रफी जी और आशा भोसले। दोस्तों हम चलते हैं अगला गाना का और वो है मेरी हमसफर लता जी और मुकेश जी की ओर हम चलते हैं और इसमें ये गाना भी एक बहुत पुराना फिल्म है भाई और आप लोग को हम सुनाते हैं मेरे हमसफर फ्रॉम लता मुकेश जी।

मेरे हम सफर हो मेरी हम सफर, लता अमोगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे नेगेटिव इन फिर का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब, कयामत होगी। मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं, और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता के ओर हम बढ़ते हैं। जो भी महबूब मेरे के गाना है, पत्थर की सनम 1964, जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: Film पत्थर का सनम, पत्थर के सनम नई खेती सैफ ने सस्ती इस गाना को हमने निकाला है, जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथी लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है,

से पति पे चला उस पति पे मुझे मुझे लता जी फिल्म के नाम है यादगांठ से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन बुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार, उस दिन ये आंखें क्या होगा। सुनने वालों, आपने खुद ही सुना है, हम चलते हैं, ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में शमाई है। और ये फिल्म, ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे, मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई, और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और हुल्दर बिलमन के साथ में, और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना, नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

0: मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो नाम। आपको शांता की भी स्वीकार है यहाँ ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
1: उदास बैठे उनके लिए कुछ उदासी का चलाया जाए।
2: जैसे आप कहिए राजेंद्र जी, मास्टर जी तो आप ही हो, और जैसे आप कह ही चुके हैं कि जो उदास बैठे हुए हैं अभी, क्योंकि अभी संदेश तो हम सब रखने वाले हैं, और आज का कार्यक्रम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, और भी लोग भी सहयोग दे रहे हैं। तो मास्टर जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हरिओम सरन जी ने, और ये तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े, तो हम उस गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर कार्यक्रम में हम सभी जुड़ जाएंगे।

0: उदासी मन काहे को डरे। सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने ये सुंदर सा गीत जो जाकर के हरिओम सरन से हम सब सुने, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मास्टर जी आपके, और संदेश जो आज आप रखने वाले हैं आप रख सकते हो।
1: जैसे कि बातचीत चली थी कि आज गुरु की महिमा के बारे में वर्णन होगा, गुरुकुल कैसे खत्म हो गए। जो पहले जमाने में गुरुकुल होते थे, जैसे भी स्कूल और कॉलेज विद्यार्थी और ये सब चीज चलता है, और पहले गुरुकुल होते थे, गुरु के सानिध्य में लोग पढ़ाई करने जाते थे और वहां से बहुत सारी चीजें सीखते थे जो कि उनकी दिनचर्या यानी लाइफ पूरी लाइफ काम आती थी। तो क्या क्या सीखते थे ये सब चीज सीखने को मिलेगी। हमारे सनातन संस्कृति परंपरा में गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई होती थी, आर्यवर्त के गुरुकुल के बाद ऋषिकुल में क्या पढ़ाई होती थी, ये जान लेना आवश्यक है। इस शिक्षा को लेकर अपने विचारों में परिवर्तन लाएं और प्रचलित भ्रांतियां दूर करें। भ्रांतियां का मतलब होता है कि जो कंफ्यूजन है आजकल जो चल रहे हैं उसको बोलते हैं प्रचलित भ्रांतियां, उनको दूर करें और पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी उसके अनुसार अगर चलेंगे तो वैदिक शिक्षा यानी जो सबसे पुरानी शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा बोलते हैं उसको, उसके अनुसार बहुत ही अच्छा रहता है। तो क्या क्या शिक्षा थी, नंबर एक पे है अग्नि विद्या, अग्नि विद्या सीखते थे गुरु के पास। फिर वायु विद्या, वायु मतलब एयर है, और जल विद्या पानी, अंतरिक्ष विद्या। जो साइंटिस्ट आजकल स्पेस में है उनको अंतरिक्ष विद्या बोलते थे, बहुत पहले से सिखाई जाती थी। पृथ्वी विद्या एनवायरमेंट, सूर्य विद्या सोलर स्टडी होती थी, चंद्र व लोक विद्या लूनार स्टडी, मेघ विद्या वेदर फोरकास्टिंग, पदार्थ विद्युत विद्या यानी बैटरी, सौर ऊर्जा विद्या सोलर एनर्जी, दिन रात्रि विद्या दिन और रात्रि के बारे में जानकारी होती थी, सृष्टि विद्या स्पेस रिसर्च होता था, खगोल विद्या एस्ट्रोनॉमी, भूगोल विद्या जियोग्राफी, और काल विद्या यानी कि टाइम, भूगर्भ विद्या जियोलॉजी, और रत्न व धातु विद्या जेम्स एंड मेटल्स। ये सारी विद्याएं अभी हैं, लेकिन पहले ये गुरु एक ही गुरु के अनुसरण में सारी विद्याएं सीखी जाती थी। आकर्षण विद्या ग्रेविटी सिस्टम, प्रकाश विद्या सोलर एनर्जी, तार विद्या कम्युनिकेशन, जो कि जैसे तार पहले बोलते थे फोन से जो वो बातचीत करते थे उसको तार बोलते थे, अभी भी हमारे सूरीनाम के लोग फोन को जो हमारे मोबाइल फोन को उसको तार ही बोलते हैं, कि लेकिन वो पहले की विद्या।
0: तो राजेंद्र जी, जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक बिल्कुल आजकल जब मोबाइल का समय हो गया है और फिर भी लोग अभी कहते कि कोई तार करिस, घर पे आते हैं तो पूछते कोई तार करिस, तो यानी कि कम्युनिकेशन
1: है। पुरानी विद्या है ना, जब तार तार के माध्यम से पहले बात होती थी जब शुरू हुआ है, और जब एक तार दूसरे तार से जुड़ता था वायर यानी तब वो तार यानी वायर तब बात हो पाती थी, लेकिन आजकल फ्रीक्वेंसी के मोबाइल मतलब चलता फिरता, तो चलता फिरता उसमें ऑटोमेटिक वो तार की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो आप लोग बोलते हैं उसको तार ही बोलते हैं अभी भी। तो यानी वैदिक पुराना जो सिस्टम है उसी में चल रहा है। तो अच्छा, विमान विद्या प्लेन के बारे में बात होती थी, जलयान विद्या वाटर वेसल्स के बारे में बात होती, अग्नेय अस्त्र विद्या आर्म्स एंड एम्यूनेशन के बारे में, जीव जंतु विज्ञान विद्या जियोलॉजी यानी बॉटनी, और यज्ञ विद्या मटेरियल सिक, यज्ञ विद्या यानी जो आप लोग पंडित लोग जो यज्ञ इत्यादि करते हैं उसके बारे में विद्या। ये तो बात हुई वैज्ञानिक विद्याओं की, जो वैज्ञानिक विद्या है इन ये सब बात है। अब बात करते हैं व्यवसायिक और तकनीकी विद्या की। जो वैज्ञानिक बात विद्या थी वो तो ये सब चीजें है, लेकिन अब व्यवसायिक जो वाणिज्य है, कृषि है, पशुपालन है, इसके बारे में बात है। तो वाणिज्य यानी कॉमर्स के बारे में कृषि एग्रीकल्चर है, पशुपालन एनिमल और पक्षी पालन वर्ल्ड कीपिंग, जो पक्षी रखते थे उसको पालने के उसको भी वर्ल्ड कीपिंग बोलते हैं, पशु प्रशिक्षण एनिमल ट्रेनिंग के बारे में, और यान यंत्रकार यानी मशीनिकल के बारे में, मशीन्स जो होती थी, और रथकार व्हीकल डिजाइनिंग के बारे में, रत्नकार जेम्स जो अंगूठी के अंदर पहना जाता है उसको जेम्स रत्न बोलते हैं, जो पत्थर का होता है, सुवर्णकार ज्वेलरी डिजाइनिंग के बारे में, वस्त्रकार टेक्सटाइल यानी जो वस्त्र बनाते हैं उसके बारे में, कुंभकार पोएट्री, लोहकार मेटलर्जी, तक्षक रंगसाज डाइंग के बारे में, और खटवाकर रज्जूकर लॉजिस्टिक के बारे में, वास्तुकार आर्किटेक्ट के बारे में। अभी आर्किटेक्ट बहुत जबरदस्त चल रहा है क्योंकि वो वास्तुकार है, उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं। पाक विद्या यानी कुकिंग, जो सब लोग घर में खाना पकाते हैं, बनाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, आज मेरे यहाँ पार्टी कल, तो वो एक से एक खाना लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा खाना बनाऊँ तो उसकी तारीफ हो, और उस बारे में बहुत पहले ही गुरुजी सब सिखा देते थे। तो पाक विद्या यानी हर किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन बनता है और एक दूसरे को बुला के उसको खिलाते हैं और वो कहता है वाह बहुत अच्छा था, तो जो बनाने वाला है उसको उससे अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं पाक विद्या। सारथ्या, सारथ्या बोलते हैं ड्राइविंग को, जो ड्राइविंग करते हैं। नदी प्रबंधक, वाटर मैनेजमेंट की बात है। सूचीकार डाटा एनर्जी, और गौशाला प्रबंधक एनिमल रखने के वाली जो पद्धति थी, जो गाय रखते थे उसको गौशाला प्रबंधक बोलते हैं। और उद्यानपाल हॉर्टिकल्चर के बारे में, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि बाग, बाग यानी बगीचा, फलों का बगीचा, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और वनपाल जो जंगल में हॉर्टिकल्चर है, जंगलों में बड़े बड़े बगीचे लगाते हैं, उसको भी हॉर्टिकल्चर। नापिक पैरामेडिकल जो नापते हैं। यह सब विद्या गुरुकुल में सिखाई जाती थी, पर समय के साथ गुरुकुल लुप्त हुए तो यह विद्या भी लुप्त हो गई। आज मैकालय पद्धति से हमारे देश के युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। मैकालय यानी जो एक अंग्रेज था उसने एक शिक्षा बनाई, उसको मैकाले की शिक्षा बोलते हैं। उसने एक सिस्टम बनाया शिक्षा का, और उसने बोला ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसी के अनुसार अभी भी चल रहा है, तो उसको बोलते हैं मैकाले पद्धति। तो ये सब अभी भी चल रहा है, और भविष्य जो है किस तरफ जा रहा है सब लोग जानते हैं। ऐसे समय में गुरुकुल पुनः उद्धार की आवश्यकता है। जब ऐसा एक समय आ गया तो गुरुकुल फिर दर्शाता है कि वैसे ही सिस्टम होना चाहिए था जो पहले था। तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा हो जाए संजय जी, और इसके बाद बातचीत जारी रहेगी।
0: जरूर राजेंद्र जी, हम सब जरूर एक सुंदर सा नगमा रख रहे हैं, और उसके बाद में हम सब फिर ये गुरु का शिक्षा जो आज हम सब के लिए आप रख रहे हैं और आगे को और बढ़ाएंगे।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और जा कर के राजेंद्र जी जो हम सबके संदेश रख रहे हैं, और हमारे भाई नोनो जी जो रोटरडम शहर से फ़ोन किए, इस बात को सुन कर के उन्हें भी और ये बात एहसास हो रहा कि बिल्कुल पहला के पहले के कितना चीज़ जो आज नहीं है और उस पर हमें और दृष्टि देना चाहिए। पर क्योंकि राजेंद्र जी अभी काफ़ी संदेश रखने वाले हैं, सभी सुनने वालों भी आप सुनते रहना। राजेंद्र जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
1: जी, जैसे कि बात चल रही थी कि गुरुकुल में पहले क्या क्या एक ही गुरु सब चीज सिखा देते थे, और अभी तो अलग विषय का अलग गुरु, और फिर अलग जो एक चीज जानता वो दूसरी नहीं जानता, और पहले सब रकम का चीज एक ही गुरु सिखाए दे और सब लोग सीख जाए।
0: तो राजेंद्र जी, इस पे तो मुझे कुछ ख्याल आता है। इस पे मुझे ख्याल आते हैं, आप जब यहाँ और हॉलैंड में भी एम्बेसी की ओर से थे, और तो आप संस्कृत, हिंदी, योगा और अनेक अनेक यानी कि कितनी चीज भी आप भी सिखाते थे, तो इस प्रकार से।
1: हाँ, तो वहाँ पे जिस प्रकार का, क्योंकि मैं वहाँ पे टीचर ऑफ इंडियन कल्चर था, तो जो इंडिया के कल्चर है वो सब चीज सिखाना ही मेरा काम था, और मैंने सिखाया, और इससे लोगों को अति फायदा भी हुआ, लोग सीखे भी, तो ऐसे होना चाहिए। ये वैदिक पद्धति थी, तो मैं वैदिक पद्धति से ही सब लोगों को पढ़ाता था और आगे भी पढ़ाएंगे। तो बात चल रही थी भारत में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए, कॉन्वेंट स्कूलों ने बर्बाद किया। कॉन्वेंट एक यानी कि जो गवर्नमेंट, जो अंग्रेजों ने स्कूल बनाए, कॉन्वेंट बोलते हैं उनको, उन्होंने बर्बाद किया 1858 में, यानी 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना। कब बना? 1858 में एक एक्ट बना, अंग्रेजों ने बनाया, कि इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की, जो लॉर्ड मैकाले है उसने ड्राफ्टिंग की, कि कैसे भारत का जो गुरुकुल सिस्टम वो खत्म किया जाए और हमारी जो शिक्षा उसके अनुसार पढ़ाया जाए। लेकिन उसके पहले उसने यहाँ भारत के शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उससे पहले उसने क्या किया कि जो इंडिया में हमारे भारत में शिक्षा व्यवस्था थी उसका सर्वेक्षण किया, मतलब उसने देखा बारीकी से कि ये लोग कैसे करते हैं कि अभी तक हमारे कब्जे में पूरा नहीं हो पाया, इनकी वो है क्या, मेन खूबी क्या है। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था जी डब्ल्यू लूथर, और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया। लूथर जिसने भारत, उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता है, और मुनरो जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था उसने लिखा कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। यानी 100 में से जो लूथर था उसने अपने दक्षिण भारत की रिपोर्ट दी कि 100 में से 97 यानी 97% लोग शिक्षित हैं, और जो दूसरा था उसने कहा वहां तो सारे 100 के 100 हैं। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी, और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। जो मैकाले था उसने सोचा कि ऐसा तो इन पर राज नहीं किया जा सकता पूर्ण रूप से, लेकिन अगर शिक्षा पद्धति बदल दी जाए तो शरीर से इंडियन होंगे लेकिन दिमाग से हमारे हिसाब से काम करेंगे, इसलिए ऐसी इनकी शिक्षा पद्धति कर दो।
0: यानी कि उन्होंने अपना चालाकी भिड़ाया,
1: चालाकी शिक्षा से कर दिया उन्होंने। अभी भी लोग गुरुकुल में जो पढ़ते हैं उनका बुद्धि अलग होता है, और जो जो इंग्लिश और दूसरे स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उनका बुद्धि अलग होता है। तो उससे पता चलता है कि गुरुकुल का विद्यार्थी है
0: कि कॉन्वेंट
1: का है, पता चलता
0: अपना
1: है
0: भारत के।
1: हाँ, तो मैकाले एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है मुहावरा यानी एक बोल है कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों की गैर कानूनी घोषित किया, यानी जो गुरुकुल है वो कानून के अनुसार नहीं, वो गैर कानूनी, ऐसा उसने घोषित कर दिया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। पहले क्या करते थे कि समाज कुछ ना कुछ शिक्षा पद्धति के लिए कुछ कोई खाना देता था, अन्न देता था, कोई पैसा देता था, ऐसे चलता था। लेकिन जब उसने गैर कानूनी कर दिया तो वो सब चीज कम होने लग गया। फिर संस्कृत को गैर कानूनी, जो संस्कृत भाषा है उसको बोला कि ये गैर कानूनी, कानूनी नहीं है, ये लॉ में नहीं है, और इस देश के गुरुकुल को घूम घूम कर खत्म कर दिया, उसमें आग लगा दी, उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा, जेल में डाल दिया। 1850 तक इस देश में 732,000 गुरुकुल हुआ करते थे, और उस समय इस देश में गांव थे 750,000, यानी हर गांव में एक गुरुकुल होता था, मतलब औसतन एक गुरुकुल होता ही होता था एक गांव में। वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था, और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलके चलाते थे, न कि न राजा महाराजा। गुरुकुल में कितना विषय पढ़ाते थे? 18 विषय, 18 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और समाज के यानी सभी लोग उसको, गुरुकुलों को चलाते थे। राजा महाराजा लोग उसको नहीं चलाते थे, समाज के लोग चलाते थे। गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह के सारे गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया, और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित कर दिया, और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई, और ये तीनों गुलामी जमाने की यूनिवर्सिटी आज भी देश में है। यानी अंग्रेजों ने क्या किया कि जो शिक्षा प्रणाली थी उसको खत्म कर अपने अनुसार शिक्षा बनाई, और यूनिवर्सिटी भी चल रही, तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ा जाए और फिर आगे की बातचीत मैकाले की बात रखी जाए।
0: जरूर राजेंद्र जी, और हम एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ेंगे और फिर अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने गुरु के अंतर्गत जो संदेश सुन रहे हैं, राजेंद्र जी जो जुड़ा हुआ है भारत से और हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं, जिन्होंने इस बात को सुनकर उन्हें पुराने ख्यालों और आ गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने और नानी नाना आजी आजा को जो भारत से आए थे उनका संदेश सुने। पर संदेशों में संदेश क्या है राजेंद्र जी?
1: उनके जो आजी आजा भारत से गए थे और वो इसी गुरुकुल पद्धति से गए थे, तो आज का जो विषय है इसलिए उनको बहुत अच्छा लग रहा कि अगर यही पद्धति मेंटेन रहती तो आज हमारा देश जो पहले सोने की चिड़िया और विश्व गुरु था, अभी भी है, लेकिन उसकी ओर उसी पद्धति के अनुसार बहुत आगे बढ़ा जा सकता था। इसीलिए सब लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती और फोन स्टूडियो में करके भी बताते हैं ताकि हम लोगों को पता चले। बात कर रहे हैं, मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है वो। उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूल से पहले बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इनको अपने परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने

0: कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जैसे बच्चे स्कूल के आते हैं हमारे साथ में भी अभी योग में आ रहे थे, तो उनको बोलते हैं कि एक दो तीन चार सौ तक गिनती आती, वो कहते हैं नहीं आती है, और 1 2 3 4 तो वो कहते हैं हाँ ये तो आती है। तो इस प्रकार की जो बात मैकाले जब कह रहा है और आज सिद्ध हो रही है तो साफ साफ देखने को मिल रही है। उस समय की जो चिट्ठी थी वो अभी एकदम साफ दिखाई दे रही है। अपनी भाषा बोलने में भी लोगों को शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरे पे रोप पड़ेगा, हम तो खुद में हीन हो गए, जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है दूसरे पर क्या रोप उसका पड़ेगा। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी भाषा सिर्फ 11 देशों में बोली और पढ़ी और समझी जाती है। जो हमारा रेडियो का प्रोग्राम है वो 188 देशों में सुनाई देता है।
1: जी हाँ, जी हाँ राजेंद्र जी, 188 देशों में।
0: हाँ, लेकिन जो देश हैं दुनिया में वो 204 देश है, तो कुछ देशों में नहीं सुनाई देता कि हम लोगों का जो प्रोग्राम है।
1: अब आजकल इंटरनेट के माध्यम से जो इंटरनेट से सुनेंगे तो सुन लेंगे,
0: वो उन देशों में भी सुना जा सकता है
1: जरूर।
0: और एक नया देश जो बना है कैलाशा, उसमें
1: कैलाशा देश के बारे में तो अभी तो हमने नहीं सुना है राजेंद्र जी, क्या उसके बारे में कुछ और संदेश है?
0: साउथ अमेरिका में एक स्वामी जी भारत के गए हैं, उन्होंने एक अलग से देश बनाया है, उसका नाम है कैलाशा। तो आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं, उसका वीजा भी लगा है, पासपोर्ट भी बना है और सब प्रकार का सुझाव है वहाँ पे। उन्होंने अलग एक कंट्री, नई कंट्री बनाई, लेकिन वो 204 देशों में आती कि 205 में आती है ये देखना पड़ेगा। ये विषय गूगल सिद्ध करेगा, गूगल बताएगा कि कौन से में आती।
1: जरूर गूगल महाराज से इसे और उस पे चेक करेंगे,
0: गूगल महाराज इसमें ज्यादा स्पष्टता बता पाएंगे।
1: सही बात।
0: फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो 11 देशों में अगर है तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा 204 देशों में कैसे हो जाएगी, ये विषय। संस्कृत भाषा जो है सबसे पुरानी भाषा है और उसको जो बोलता है एकदम शुद्ध और सटीक, तो वैसे ही वो शुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं, दरिद्र भाषा है, जो शब्द है उसके समृद्ध नहीं है, यानी हेल मोय नहीं रही, वो हल्की दरिद्र सी है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी, और ईसा मसीह जो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा, अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती है। यानी जो ईसा मसीह भाषा बोलते थे वो बंगाली जो भाषा हमारे देश की है उससे मिलती जुलती भाषा थी। समय के काल चक्र में वो भाषा बिल्कुल एकदम लुप्त हो गई, यानी अब वो भाषा नहीं रही। तो क्यों ना हम लोग को एक सुंदर सा संदेश की ओर बढ़े और फिर बातचीत जारी रहे।
1: जैसे आप कहो राजेंद्र जी, शांता जी वही
0: सुंदर सा जो नगमा है, शांता जी के पिटारे से निकला हुआ नगमा सुंदर ही होता है
1: हर वक्त हर समय, और उसके बारे में हमें कोई चिंता करने की बात नहीं।
0: हाँ जी।

0: जिस प्रकार से ये सुंदर सा गीत रखा गया, शांता का पिटारा से निकाला हुआ, पर हमें भी समय पे ध्यान देना पड़ता है। और राजेंद्र जी जो संदेशों में और भी संदेश रखने वाले हैं, तो राजेंद्र जी आगे का कार्यक्रम में क्या संदेश है?
1: जो बातचीत चल रही थी गुरुकुल पद्धति की और जो भाषा की बात चल रही थी, उसमें थोड़ा सा और संदेश है कि लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है अमेरिका में, वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है, यानी वहाँ की जो भाषा है वो फ्रेंच में है। और जो भी वहाँ पे काम काज होता है, समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है, तो फ्रेंच में सब भाषा बोलते हैं, वहाँ लिखी जाती है। उनका कभी भला नहीं होता, और यही मैकाले की रणनीति थी। जो अपनी भाषा में काम नहीं करता, बोलता नहीं, उनका भला नहीं हो सकता। और मैकाले भी यही कह रहा है, जिसमें लगभग वो विजय पा चुके, क्योंकि आज का युवा भारत को कम यूरोप को ज़्यादा जानता है, भारतीय संस्कृति को ढकोसला समझता है, लेकिन पाश्चात्य देशों को नकल करता। पाश्चात्य यानी जो विदेश है, भारत बाहर के देश है, वैसे जैसे वो करते हैं वैसे भारत भी, भारत के नए बच्चे लोग करते हैं, और अपने संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को प्रमुखता और विशेषता को नहीं जानते हुए भी वामपंथी यानी जो भारत दूसरे देश की नकल करते हैं, उनके समर्थन करते हैं। सभी बंधुओं से एक चुपता सवाल, हम सभी को धर्म की जानकारी होनी चाहिए, यानी हमारा जो वैदिक सिस्टम है, यानी पुरातन का जो सबसे पुराना सिस्टम है, उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, क्योंकि धर्म से ही हमारे राष्ट्र धर्म सिखाता है, और धर्म से ही हमें सामाजिकता सिखाती। धर्म यानी कोई, हम हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं एक वैदिक धर्म की, जो सबसे पुराना है उसकी बात चल रही है। धर्म सब में सामाजिकता सिखाता है, वैदिकता यानी सब सामाजिक एक जुटता रहती है, और इसी में हमारे माता पिता गुरु और राष्ट्र के प्रति प्राण न्योछावर करने की प्रेरणा देते हैं। यानी जो हमारे गुरु हैं माता पिता हैं, उन्हें यही बात करते हैं कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए, पुरानी जो चीजें हैं वो मेंटेन रहे, चाहे तो प्राण ही क्यों ना चले जाए। और हम जो हमारा जो सनातन है यानी सबसे पुराना सिस्टम है, उसी के अनुरूप अगर चले तो वो एकदम वैदिक वेदों के अनुसार बनाया हुआ और सब एकदम साइंटिफिक है, उसके अनुसार अगर चलाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये बातचीत हमारी आज जो गुरु की महिमा के बारे में थी, मुझे लगता है कि जो लोग इस चीज को सुने और समझे होंगे, उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और संजय जी, आप इसके बारे में कुछ, 2 मिनट का समय है आपके पास, कुछ पूछना चाहते हैं तो इसको और ज्यादा क्लेरिफाई जस्टिफाई किया जाए।
0: राजेंद्र जी, पूछना क्या है समस्त, और यानी कि संदेश तो आपने रख ही दिए हैं, जो पहले और गुरुकुल में मिलता था, जो गुरु, और जो लास्ट में जैसे कि आपने कहा कि गुरु माता पिता और गुरु बंधु, किस प्रकार से कि कैसे कौन गुरु है, अभी इसके बारे में और भी चर्चा किया जाएगा। क्यों ना हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी जरूर।

0: जी संजय जी, इसके बारे में या अनुराधा जी आपको मैं बताती हूँ और पूछती हूँ कि जो हम स्कूल में ऐसे ही शिक्षा पाती हूँ ना, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये है सिर्फ अपने परिवार को कुछ देने के लिए या अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए, पर जो ग्रंथों से हम शिक्षा लेते हैं तो उसको हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: आपने सही कहा शांता जी। मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए हमारे जीवन में हमें ज्ञान तो बहुत जगह से मिलता है, और गुरु ज्ञान गुरु से मिलता है, पर सबसे जो पहला ज्ञान हमें अपने जीवन में मिलता है वो है अपनी माता पिता से और अपनी माँ से। तो माँ ही हमारे जो हैं, जो हमारी मार्गदर्शन करती हैं। सबसे पहले हम जीवन में इस दुनिया में आते हैं तो माँ केवल शब्द मात्र नहीं है, अपितु इसमें पूरा संसार समाहित है। माँ की जितनी भी हम व्याख्या की जाए उतनी कम है। माँ के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक माँ जीवन दाता होने के साथ साथ कई अन्य प्रकार के भी रोल निभाती हैं, जैसे जन्मदाता है माँ, पालनहार है माँ, प्रथम गुरु है माँ, माँ अच्छी दोस्त है, रक्षक है माँ, और हमारी कोच है माँ। और इसी प्रकार से जीवन के हर मोड़ में माँ अनेक प्रकार से हमारे साथ रहती हैं। माँ हमारी माता होने के साथ ही वह हमारी प्रथम गुरु भी होती हैं। माँ के लिए, मेरे लिए अगर मैं माँ के बारे में बोलना चाहूँ तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। सभी ये इस बात से मेरे से सहमत होंगे कि हमारे जीवन में हमारे माँ का उनका कितना बड़ा रोल होता है। हमें वो जीवन के बारे में सिखाती हैं, हमें कितना कुछ ज्ञान देती हैं, और सबसे प्रथम ज्ञान तो हमारी माँ ही हमें देती हैं। तो माँ के लिए तो माँ तो हमारी सबसे बड़ी गुरु हैं। और आप अगर ये गाना सुनाना चाहें हमारे सुनने वालों को, ये बहुत ही सुंदर गाना है, माँ मेरी माँ।

जैसे मैंने पहले बोला, माँ हमारी माता होने के साथ ही वह हमारी प्रथम गुरु भी होती हैं। माँ की आंचल में रहकर हम चलना और बोलना सीखते हैं। माँ हमें अच्छे संस्कार देती हैं। अच्छा, माँ हमें क्या सही है और क्या गलत उसकी पहचान करना सिखाती हैं। तो माँ का कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में, क्योंकि हमें प्राथमिक ज्ञान अपनी माँ से ही मिलता है। हम जो भी कुछ सबसे पहले सीखते हैं वह अपनी माता से ही सीखते हैं। इसलिए मैं इस बात को काफ़ी गर्व से के साथ कह सकती हूँ कि मेरी माँ ही मेरी प्रथम गुरु हैं। भगवान से ज़्यादा महत्व माँ का होता है। भगवान भी माँ की ममता पाने के लिए तरस जाते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे जुबान में सबसे पहला शब्द माँ का ही आता है। हम कहते हैं हे माँ, ओ मम्मी, हम उन्हीं को याद करते हैं। तो माँ हमारे रग रग में रहती हैं। हमारे पूरा जो अस्तित्व है वो हमारी माँ से ही हमें मिलता है। इसलिए माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। आप कह सकें तो माँ का दर्जा तो हम भगवान के बराबर, क्या भगवान से ऊंचा मानते हैं? तो क्योंकि माँ जो है वही हमें इस संसार में उन्होंने हमें लाया है। एक माँ और माँ के बच्चों का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है, परंतु अपने बच्चों पर किसी भी प्रकार की संकट या आँच नहीं आने देती, ना बर्दाश्त करती है। इसलिए माँ का हमारे जीवन में सबसे ऊंचा स्थान है। एक माँ बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। माँ बच्चों को जन्म देते समय असहनीय पीड़ा को सहन करके बच्चे को इस दुनिया में लाती है। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरी खुद दो बेटियाँ हैं। तो मैं जब अपनी बेटियों से कहती हूँ, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बनना किसको कहते हैं। क्योंकि जब तक आप मेरी बेटियाँ जब हुई, तभी मेरे को अपनी मदर की भी वैल्यू पता चलती है कि वो उन्होंने कितना कष्ट सहा जो हमें इस दुनिया में वो लाई। क्योंकि माँ हर कष्ट सह जाती है अपने बच्चों के लिए। वो हजारों कष्ट सहन करके बच्चों का पालन पोषण करती है तथा जीवन जीने की सही राह माँ ही हमें दिखाती है। इसलिए माँ के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसे हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। हमारे माता पिता के साथ समय बिताना ये सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य होता है हर बच्चे का। आप कहाँ भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, पर माँ बाप वो हमारे लिए हमारे भगवान के बराबर हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें और हमेशा उनको सुखी रखें। ये हमारा पहला कर्तव्य है।

0: आकाश खेर ने अपने आवाज़ से ये सुंदर सा गीत हम सबको सुनाए, और ख़ास करके अभी संदेश और आने वाले हैं, आप सुनते रहना और हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य यही होता है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा से और प्रकाश आ जाए, और कार्यक्रम इसी का लक्ष्य यही है। दोस्तों, हम सब और संदेशों में संदेश जो अनुराधा जी जो रख रहे हैं, तो अनुराधा जी आगे अपना और संदेश रखिए।
1: मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे माँ के दिल को ठेस पहुँचे और उनके आँखों में आंसू आए। माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है। बचपन में जब बच्चा जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे लिए अपनी नींद गंवाकर हमें प्यार से लोरियां सुनाती है, हमारे लिए कितना कष्ट सहती है, दुनिया से लड़ जाती है। और जहां बच्चा या हम बच्चे जब होते हैं तो हम गिरते हैं तो माँ आकर हमारे आंसू पोंछती है और हमें प्यार से अपनी गोद में बैठाती है। तो वो माँ जब बूढ़ी हो जाती है जो और हम जवान हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे हमारा क्या कर्तव्य है हमारी माँ के लिए। और हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी माँ के आंखों में कभी आंसू ना आए, उन्हें कभी अकेलापन ना महसूस हो। देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है कि जीवन में इंसान इतना व्यस्त हो जाता है अपने रोज के एवरीडे लाइफ में, कार करता अपने कार में, अपने रोज अपनी की फैमिली में, कि हम अपने माँ बाप को निग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ करा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने माँ बाप जब वो थोड़े ओल्ड हो जाते हैं उनकी हम सेवा करें, उनका ध्यान रखें। बहुत बार होता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, हम दूर रहते हैं और आपके माँ बाप आपके करीब नहीं हैं, कहीं दूर दूसरी जगह में हैं, तो आप एक केवल उनको फ़ोन करके ही बात कर सकते हैं। आप अपने माँ को, आपको पता है एक माँ आपके उस फ़ोन कॉल के लिए कितना इंतज़ार करती हैं, कितना वेट करती हैं, वो उनके लिए कितना अनमोल समय होता है। जो आपके लिए तो हो सकता है कि आप इतनी बिजी लाइफ में आपके लिए टाइम ना हो, पर वो माँ आपका आपकी आवाज़ सुनने के लिए कितना तरसती है। तो मैं सबसे एक विनती करूँगी दर्शकों से जो सुन रहे हैं कि प्लीज़ ये प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाए तो आप एक अपनी माँ को फ़ोन करके उनसे उनके हालचाल पूछ लीजिएगा, अपने फादर से, अपनी मदर से, और एक हेलो, एक सिंपल हेलो ही बहुत है, उनका दिल खुश हो जाएगा। और मैं यही विनती करूँगी कि देखिए, माँ बाप को हमेशा किसी भी कैसा भी ओकेजन आता है, यहाँ तो हम मदर्स डे बनाते हैं, फादर्स डे बनाते हैं, वो तो एक दिन होता है, पर माँ बाप के लिए मदर्स डे तो इट्स लाइक एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट पेरेंट्स हमारे लिए, जिन्होंने अपना जीवन इतने संघर्ष में, इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स में उन्होंने हमें बड़ा करा। और कितनी मुसीबतें सही हैं, कम पैसे होने के बावजूद भी कभी आपको उन्होंने ये महसूस नहीं करने दिया होगा कि उनके पास पैसे की कमी है, या माँ ने अगर आप खाना खा रहे होंगे तो आप कहेंगे माँ ये बहुत रोटी ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है, हो सकता है वो सब्जी बस लास्ट थोड़ी सी बची हो और माँ ने खाना भी निकाला हो, कहेंगे हाँ बेटे बेटी खा लो, आप ये भी खा लो, कहेंगे अच्छा एक और रोटी खा लो, भले ही वो माँ सब्जी भी ख़त्म हो गई हो या रोटी भी ना हो, तो वो आपको कभी भी ये महसूस नहीं होने देंगी कि वो भूखी है। अगर सब्जी ख़त्म भी हो जाएगी तो वो कहेंगी, आप अगर अपनी मम्मी से पूछेंगे आपने खाना खाया, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं मेरा तो बहुत पहले ही से पेट भरा हुआ है, आज मेरा मन नहीं है खाने का। तो ऐसे माँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों के लिए कितनी ही सैक्रिफाइसेस करती हैं। तो हमें, हमारा कर्तव्य है कि अपनी माँ, अपने पिताजी, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे सबसे गुरु हैं, सबसे बड़े लाइफ में, तो हम उनकी हमें अपने जीवन में हमें उनका उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट हमेशा देना चाहिए। चाहे आप पास हों, जो लकी होते हैं, जो जिनके माँ बाप उनके पास रहते हैं और उनको, जिनको सेवा करने का मौका मिलता है, उनसे भाग्यशाली तो कोई और नहीं हो सकता। पर बहुत सारे हैं, जैसे मैं यहाँ पर नेदरलैंड्स में हूँ, हॉलैंड में, और मेरे माँ बाप मेरे इंडिया में रहते हैं, भले ही वो दूर रहते हैं, पर मैं हमेशा, मैं उठते ही सबसे पहले भगवान की नाम लेकर अपने माँ बाप को सुबह सुबह सबसे पहले एक फ़ोन मिलाती हूँ हाल चाल पूछने के लिए, चाहे भले ही वो 5 मिनट का होता है, पर उनसे बस ये पूछने के लिए कि उनकी रात अच्छी बीती, अच्छा, और आशा करती हूँ उनका दिन भी अच्छा जाए और उनकी तबीयत ठीक रहे, सब है। तो वो बस 5 मिनट का हमारा रहता है। मेरी माँ कोई ऐसा कुछ खास नहीं बोलेंगी, पर उनकी आवाज़ सुनकर, वो हमारी आवाज़ सुनकर उनको ये हो जाता है कि हाँ बच्चे ठीक हैं, सब ठीक है। वो तो बस एक छोटी सी विनती है कि देखिए अपने माँ बाप को हमेशा अपनी पलकों में बैठाएं और हमेशा उनकी देखरेख करें, उनकी देखभाल करें।

0: जी गुरु की आज्ञा पालन हेतु स्वयं को झोंक देने वाला शिष्य अरुणी। प्राचीन समय में धौम्य नामक मुनि का एक आश्रम था। उस आश्रम में अनेक शिष्य विद्याभ्यास के लिए रहते थे। उनमें अरुणी नामक एक शिष्य था। एक समय धुआंधार वर्षा होने लगी। समीप के नाले का पानी खेत में ना जाए, इस हेतु प्रतिबंध लगाने के लिए वहाँ एक बांध बनाया गया। उस बांध में दरारें पड़ने लगी। तब गुरुदेव ने शिष्यों से कहा, पानी को खेत में आने से रोको। अरुणी एव कुछ शिष्य बांध के समीप आए। बांध में आई दरारों को भरने के लिए सबने प्रयास किया, किंतु पानी का वेग अत्यधिक होने के कारण संपूर्ण प्रयास निष्फल हो गए। बांध के बीच का भाग टूटने लगा एव पानी धीरे धीरे खेत में आने लगा। अब कोई लाभ नहीं, ऐसा सोचकर सभी शिष्य लौट आए। दिन भर परिश्रम करने से थके सभी शिष्य गाढ़ी नींद में सो गए। सवेरे तक वर्षा थम गई। तब सबके ध्यान में आया कि अरुणी का कोई पता नहीं है। संपूर्ण आश्रम में ढूंढने पर भी जब वह नहीं मिला, तब वह सभी गुरुदेव जी के समीप आकर बोले, हे गुरुदेव, अरुणी खो गया है। श्री गुरु बोले, हम खेत में जाकर देखेंगे। सब शिष्य एव ऋषि धौम्य खेत में गए और उन्होंने देखा कि टूटे हुए बांध के बीच में पानी को रोकने हेतु स्वयं अरुणी ही वहाँ आड़ा होकर सोया हुआ है। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। रात भर पानी में भोजन नींद के बिना ऐसा करते देख अरुणी के प्रति सभी के मन में प्रेम भाव निर्माण हुआ। वर्षा रुक जाने के कारण पानी का बहाव तो पूर्व की अपेक्षा घट गया था, परंतु अरुणी को वहाँ नींद लग गई थी। सभी वहाँ गए और उसे जगाया। श्री गुरु ने उसे समीप लेकर प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। यह देखकर सब शिष्यों की आंखों में पानी आ गया। बच्चों, अरुणी से हमें क्या सीखना है? तो श्री गुरु की आज्ञा पालन करने की तीव्र उत्कंठा। आज्ञा पालन करने के लिए अरुणी ने स्वयं का विचार नहीं किया, इसलिए वह गुरु का एक सच्चा शिष्य बना। अतः हम भी हमारे गुरु के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, हमें भी आज्ञा पालन गुण निर्माण हो, हम भी गुरु की आज्ञा का पालन करें।
1: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और बबली जी ने अरुणी नाम के एक शिक्षक का और संदेश, जो गुरु का पालन करने से और क्या प्राप्त होता है, और हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे। फिर कार्यक्रम में देखा जाए कि और संदेशों में संदेश क्या है। आज जबकि गुरु का विशेषता रखा गया 23, तो उसी में हम सब संदेश रखने वाले। पर सुनने वालों, ये मत भूलना कि आप ये मत भूलना कि बुढ़ापा जो आ गया है तो आपको भी कुछ नहीं करना है। उस अंतर्गत में भी कुछ संदेश अभी रखा जाएगा। तो बुढ़ापा का अंतर्गत जो अभी कुछ संदेश रखा जाएगा, वो भी आप गौर से सुनना, क्योंकि हमारा लिखा हुआ नहीं है, ये तो औरों को लिखा हुआ। पर जो लिखते हैं ना, तो उसे भी भगवान का, और यानी कि स्क्राइफर जो होते हैं, तो उसे वो कला होते हैं, और उस वो अपना कला को और यानी कि लिपि में रख देते हैं, यानी कि लिख देते हैं। तो शांता जी, ये गीत के बाद और फिर हम सब ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर उपस्थित।

0: ये सुंदर सा गीत जो हम सब फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा यहाँ डरहाख शहर हॉलैंड से ब्रॉडकास्ट किया गया। दोस्तों अभी आपने सुने और जा कर के अनुराधा जी और बबली जी भी गुरु का और महिमा जो और राजेंद्र जी जो भारत से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी संदेश जो रखा गया आज के कार्यक्रम में ज्योति का प्रकाश में। पर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा बबली जी की बुढ़ापे में आराम से और रहने के हेतु कुछ सुझाव कहे गए हैं, क्या उसके बारे में आपको पता है कुछ?
1: अभी तक तो नहीं पता, अगर आप बताएंगे तो शायद पता चल जाए।
0: अभी आप कह रहे नहीं पता है, अभी तो बुढ़ापा दूर है ना आपका?
1: लेकिन ये थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, कभी पैर में दर्द होता है, थोड़ा चलो तो घुटने दुखने लग जाते हैं।
0: तो ये तो होता है कि स्पोर्ट करना, क्योंकि एक दिन में हमें कितने स्तप रखना है, कम से कम
1: 6000।
0: शांता जी कहते हैं 6000 स्तप जो हमारे और लिए वैज्ञानिक लोग खोज करके रखे हुए हैं कि एक दिन में 6000 स्तप हमें रखना चाहिए। तो अनुराधा जी क्या आप इस पे ध्यान देते हैं कि नहीं?
2: देखिए संजय जी, मैं ये कह सकती हूँ कि हॉलैंड में आने के बाद मैं अपने आप को चाहती हूँ कि मैं बुढ़ापे में भी फिट रहूं, तो इसलिए साइकिलिंग करती हूं, सुबह योगा करती हूं, मेडिटेशन इज़ वेरी गुड। और आप वो सब भी ना करें तो घर में ही आप थोड़ा सा चल फिर लें तो वो बहुत फ़ायदा करता है।
0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि हमारे जो सहयोगी साथी होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और शांता जी तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा और चलता है, 6000 स्तापों से ज़्यादा ही एक दिन में चल जाते होंगे। पर शांता जी माइक्रोफोन तो थोड़ा दूर से है।
1: बिल्कुल सही कहा संजय जी ने आपने, पर आपको कैसे पता चला?
0: क्योंकि यहाँ हमारे पास एक संदेश लिखा गया कि 14 बातें जो हमें बुढ़ापा जो आ जाए तो उस पर ध्यान देना, यानी कि सुझाव। तो पहला है कि कम बोलना चाहिए ना, क्या इस पर आप लोग के क्या राय है?
2: ये मैं कह सकती हूँ कि भले ही कम बोलें पर सुनने की सहनशीलता होनी चाहिए, लोगों की बातें आप सुने और कम बोलें, और भजन सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, अपनी एनर्जी फालतू की चीज़ों में ना व्यस्त करें। बस
0: कहने के तात्पर्य यह है कि दूसरा संदेश में ये लिखा गया कि खाने पीने में और संतोषी रहे, यानी कि जो गोल गप्पे का इच्छा होता है और छोले भटूरे का इच्छा होता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बबली जी इस पर आप, मैं देख रहा हूँ तैयार हो गए कुछ कहने को, कह दो।
1: क्योंकि खाने पीने में बुढ़ापे में मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तेल वाली चीज़ें कमती खानी चाहिए। मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाएँगे तो पेट गड़बड़ा जाएगा, और नमक तेल ये भी कमती खाना चाहिए।
0: तो यानी कि अपना खाने पीने पे थोड़ा से ध्यान देना चाहिए।
1: हाँ जी।
0: तीसरा कहा जाता है कि प्रभु का स्मरण अवश्य करें, तो जैसे कि अनुराधा जी ने अभी कहा कि वैसे ही करना चाहिए ना?
1: प्रभु का स्मरण तो जरूरी बुढ़ापे में ही करें, वो तो बचपन जवानी बुढ़ापा तीनों जगह पे कर सकते हैं।
0: तो शांता जी इस पे क्यों ना एक गीत चला देते हैं?

0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने और गीत के माध्यम से भी सुने कि माला जाप करना ये कोई बुरा काम नहीं है, अगर आपसे हो सके तो करते रहना। पर चौथा है प्राकृतिक और जीवन शैली अपनाइए, यानी कि प्राकृतिक यानी कि जो नेचर वाला जीवन है, जीवन जो नेचर को और उसे वारदेर करे ना शांता
1: जी।
0: और उसके बाद में कहा जाता है कि इस पे भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि बहु बेटी के कार्य में दखल ना दे, बुढ़ापा जो आ गया था।
1: बिल्कुल सही।
0: तो ऐसा भी क्योंकि ये हमारे लिखे हुए नहीं है शांता जी, हमारे जो संत मुनियों के लिखे हुए बातें, इस पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए
1: क्योंकि ये अनुभव किया हुए बात है ना।
0: अनुभव यानी कि एरफारिंग लेयर ऑफ फंडत दत मुतवाइनी दुन। इसी प्रकार से हमें मन चाही वस्तु और मिलने पर क्रोध ना करे, यानी कि जो मन चाहते हैं और वस्तु ना मिले तो जैसे कि हमें गुस्सा चढ़ जाता है जल्दी जल्दी, वो ना करना चाहिए ना। अनुराधा जी, इस पे क्या संदेश है आपका?
2: मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान को जैसे हम अपना हमारी उम्र बढ़ती रहती है तो हमें अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए और शांत स्वभाव अपनाना चाहिए। देखिए बहुत बार थोड़ा सा 5 मिनट शांत रहने से ही कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आप 5 मिनट शांत होकर उसको सह लें, ना जवाब दें, तो देखिए एकदम से घर गृहस्थी कितनी अच्छी चलती है। तो शांत रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
0: तो जैसे कि और अनुराधा जी ने कहा कि शांत हो जाओ, शांत रहना ये और बहुत ज़रूरी है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश और ये बुढ़ापा पे भले ना करें ना इच्छाओं को, जो क्योंकि इच्छाओं जितना है जितना जल्दी जितना ज़्यादा इच्छाओं होते हैं कोशिश करना उसे, और
1: जब तक
0: हाथ पाँव चलते हैं खूब चलते रहे और करते रहे आगे बढ़ते रहे।
1: कारण कि बुढ़ापा और जो बुढ़ापा आ जाता है ना, तो हमारे आगे नवयुग जो रहते हैं बेटा बेटी जो है तो मेने फर्स्केल हो जाता है,
0: क्योंकि तो एक ही राशि के फर्स्केल हो जाता है।
1: फर्स्केल हो जाता है तो बच्चे जो उनका दिमाग ही कुछ और सोचते हैं और हमारा दिमाग जो हमारा एरफारे दिमाग है तो हम सब देखते हैं कि ना ये गलत है ये सही है। तो इस पर जो हम ज़्यादा बच्चों पे जो रोक टोक करेंगे तो बच्चे इस पर नाराज़ हो जाएंगे और जब नाराज हो जाएंगे तो आप बुढ़ापा पे तो आपको तो एक किनारे छोड़ देगा।
0: और यहाँ हम सब ज्योति का प्रकाश में ये संदेश डाले जाते हैं कि आप कम से कम और उस पर ध्यान देना। और दोस्तों सुनने वालों, जो आठवां संदेश है, अपनी धन संपत्ति का बार बार बखान ना करें, क्योंकि आपने मर्सिडीज खरीदे, आपने बड़े बड़े दुकान खरीदे, आपने बड़े बड़े ज़मीन खरीदे, पर बुढ़ापा पे सबको धीरे से और बखान ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा लिखा गया है। और अपने परिवार के और समस्याओं दूसरों के सामने ना रखनी चाहिए, तो ये तो एक ऐसा बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बबली जी, आगे को और क्या संदेश है?
3: आगे का संदेश नंबर 10, घर पर आए व्यक्ति से अपने घर की कोई बुराई ना करें।
0: तो बुराई नहीं करनी चाहिए,
1: तो ये सिर्फ जो व्यक्ति जो बूढ़े है उसको नहीं, सिर्फ ना सिर्फ
3: ये सही बात शांता, ये सबके लिए है। नंबर 11, अपने स्वास्थ्य के अनुसार घर के कामों में सहयोग करें।
0: तो घर के काम में सहयोग करें, यानी कि सॉफ्ट साइकिल अभी भी चलाना चाहिए जब हो पावे तक,
1: तंदुरुस्ती के लिए ठीक है।
3: जरूरी नहीं शांता, सॉफ्ट साइकिल सब्जी काट सकते हैं बैठे बैठे और बर्तन साफ कर सकते हैं बैठे बैठे, कुछ भी जो हल्के फुल्के कार्य हैं वो कर सकते हैं।
0: इस बात को सुन करके मैं यह मेरा आजी का ख्याल आ गया, वो सूरीनाम से आते थे और बैठे बैठे रसोई में और सब सब्जी काट देते थे और उसका बस यही ख्याल आ गया।
3: मेरी मम्मी खुद, अगर मेरी मम्मी कुछ और नहीं कर पाते थे तो बैठे बैठे प्याज लहसुन काट दूँ, सब्जी काट दूँ और ऐसे करते रहते हैं,
0: यानी कि सहयोगी सहयोग देते।
3: कपड़े तय लगा के रख दूं, यानी कपड़े सूख गए लाओ उतार दो, मैं चपत के रख दूं, कोई कहीं से कटा फटा कपड़ा है उसको बैठे पे सुई धागे से सिल देते थे।
0: तो दोस्तों ये है, और कुछ बुढ़ापे जब बुढ़ापा आ जाए तो कुछ संदेश, और इन सब बातों को आपको पता है, फिर भी हमारे लिए कुछ संदेश यहाँ रखा जाता है और हम फिर दोबारा आपके साथ और उसे बांटते हैं।
3: नंबर 12, बुढ़ापे में कष्ट को कर्म फल समझकर खुशी खुशी सहन करें।
0: तो बुढ़ापे में कष्ट को कर्म फल और समझकर खुशी खुशी, पर हर बात तो खुशी खुशी नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कुछ कुछ होता है कि जहां आपको दवा लेना पड़ेगा और रोज सुबह समय पे और शाम में समय पे, पर कहने के तात्पर्य यह है कि कर्म का फल, क्योंकि एक बार रेडियो से हम लोग बात कर रहे थे तो किसी ने कहा था ये बंद आर्किटेक्ट फॉर योरसेल्फ, आप जो बनाएंगे जो बोएंगे वो तो एक ना एक दिन काटना पड़ेगा। तो अभी हम सब और जो संदेशों में 14 संदेश जो रखा गया है कि बुढ़ापा आने पर उसका और हेतु सुझाओ, तो अनुराधा जी और 13वां और संदेश में क्या लिखा गया
2: जी? तो हमें बुढ़ापे में यह आशा ना करें कि हर काम हमसे पूछ कर ही किया जाए, तो ये सही कहा है, क्योंकि सब परिवार में सबको हमें उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और बच्चों की भी सुननी चाहिए।
0: ये बात हो जाता कि हाँ ऐसा ना हो कि हमसे सब कुछ पूछ कर करना चाहिए, नहीं।
2: और जी आखिरी सुझाव है, ध्यान रखें कि प्रभु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, सुखी और निरोगी रहिए, यही मेरी कामना है, यही मैं चाहती हूँ, यही आप लोग के बुढ़ापे में से आराम से रहने हेतु सुझाव।
0: तो सुनने वालों, ये बात जो 14 संदेश जो रखा गया आपके लिए, और मैं देख रहा हूँ शांता जी कुछ और बटन दबाने का कोशिश कर रहे हैं, चला दो शांता जी।

0: इस संसार में सब कुछ संभव है अगर शुरुआत आत्मविश्वास से हो। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
1: तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। और मैं हूँ अनुराधा, बहुत बहुत नमस्कार। और

बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को जो कि हर बार प्रोग्राम को अपने समय निकाल कर सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। आज जो वृतांत, अलग अलग प्रकार के वृतांत सुने, उन वृतांतों को मनन करेंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए सबको नमस्कार।

0: सुनने वालों, आपने सुने ज्योति का प्रकाश। कहूँगी ये ज़रूर कहूँगी कि हर पल का आनंद जरूर से लेना, हर पल का आनंद जरूर से लेना, क्योंकि खुशियाँ कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए शांता खेमई जी, अनुराधा जी, बबली आसरा जी और राजेंद्र सिंह जी। मैं हूँ आपका सेवक संजय और आशा ये रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश आपके पास जरूर पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को नमस्कार।

0: पंछी रे वो पंछी, रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाए हैं और फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ में से निकाल कर हमने चलाए हैं। म्यूजिक डायरेक्टर तो नहीं लिखा है लेकिन साज से पता चलता है कि शंकर जयकिशन के साज पर हम ये गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है, ये धमाकेदार ये है।
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए
0: क्या
1: थोड़ी

क्या बात है, ये शानदार प्यारा दुएत हम आपको सुनाए हैं ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ। आप सबका स्वागत करते हुए प्लेयर में हमने गीत रखे हैं। कहाँ गया? जी हाँ, कहाँ गया? हाँ, ये मिल गया। चलिए देखते हैं, माइत मुकेश, माइत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, सोनिक ओमी के साज पर फिल्म बेटी में से निकाला है इस तरह से।

0: ये क्या किया रे दुनिया वाले फिल्म में से हम निकाले 1969 का ये फिल्म है और हमने पेश की वो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत, जी हाँ, सोनी कोमी के साज पर फिल्म बेटी में से निकाले हैं। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलो प्रेम पुजारी की ओर बढ़ते हैं। प्रेम पुजारी में देवानंद का कास्ट है और वहीदा रहमान, तो ये प्यारा गीत हम आपको सुना दें, बहुत ज़बरदस्त गीत है। कौन संग्रेस ये गीत नहीं गाया है इस तरह से।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

हाँ जी लता जी, आपको सुनाए रंगीला रे फिल्म प्रेम पुजारी में से हमने ये गीत निकाले हैं। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। हाँ, फिल्म वो दिन याद करो, फिल्म वो दिन याद करो में से निकाल रहे हैं द मैन विद गोल्डन वॉइस और लता जी।

मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगे है जवानियाँ। ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाहौन हिंदुस्तानी आप चुन है फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पर। जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए मैं चला रहा हूँ, आपको चला भी नहीं रहा सुना भी रहा हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर फिल्म अनीता में से निकाल कर। ये एक डरावनी फिल्म थी लेकिन इतना डरावनी नहीं थी, बहरहाल थोड़ी बहुत डरावनी थी। फिल्म अनीता में से निकाल कर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ।

ना बाबा पिछवारे बुढ़ा खांसता लताजी आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म अनीता, फिल्म अनीता में से निकाल कर हमने चलाए हैं। और अनीता जी के बाद, नहीं फिल्म अनीता जी के बाद चलो हम सुनाते हैं आपको ये गीत।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार, सुनाया गया फाओ हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है रवि साहब की आवाज़ में जाना पहचाना गीत, जानी पहचानी आवाज़, जानी पहचानी संगीत है।

वाह क्या बात है, ये छेड़खानी वाली गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश किया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलते हैं, मैथिल मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आशा जी के साथ एक बार मुस्कुरा दो निक दी तुम सी में। तो 1972 का ये फिल्म, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस फिल्म का म्यूजिक दिया गया है ओ पी एन नैयर के जरिए, जरा देखो तो सही है। जी हाँ सही है।

दिल भर जाने दिल तोड़ तोड़ आशा जी ओ माई तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में से निकाल कर नहीं तक 1972 का ये गीत हमने पेश किया ओपी के साज पर। अगर ओपी ही से हम चल रहे हैं तो लीजिए एक बार फिर ओपी नैयर के साज पर इस बार आशा जी ये धमाकेदार गीत फिल्म हांगकांग।

नहीं गिनती तो ये सस्त 1962 फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं और ये गीत चला ओपन एयर के साज पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलो देखते हैं प्लेयर में हमने ये गीत रखे हैं तो क्या ख्याल है। इस तरह से मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

ना तो करो की तलाश है मन री अशभोश्री का ये गीत वे फिल्म के नाम है बरसात की रात मधुबाला और भारत का ये गीत है। दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ शायरी सुनाएंगे और कुछ चुटकली शायरी आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। दोस्तों कहते हैं माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, शादी कर लिए जिसे हमने वो तो निर्धन नारी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात कहते आजकल के जमाना में कितने लोग हैं जो बहुत टिकटॉक पे जाते हैं, कितने लोग भैया फेसबुक पे जाते हैं, कितने व्हाट्सएप पे जाते हैं, कितने लाइव बातें करते हैं और क्या क्या होता, तो सबके लिए एक शेर हम यहां से कह देते हैं कि तो टिकटॉक के रानी, अरे टिकटॉक के रानी तू है टिकटॉक के रानी और मैं हूं फेसबुक का राजा, तू है टिकटॉक के रानी और मैं हूं फेसबुक का राजा, मिलाना है तो व्हाट्सएप पे आ जा। जी हाँ दोस्तों, जब मिलना है तो जॉनी के व्हाट्सएप पे आ जा। और दोस्तों और यहां से हम कुछ प्यार भरे गीत आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते बीबी भी हक जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, शादी के बाद आदमी कश्मीर हो जाता है भैया। और चलते हैं फिर मिलोगे कभी, कभी फिर मिलोगे ये रात फिर ना आएंगे। और ये गीत है आशा जी के और परमा श्री मोहम्मद रफी और विश्वजीत का फिल्म शर्मिला टैगोर जिसमें काम किया है, आओ मिलकर सुना जाए।

और फिर मिलोगी कभी, और ये रात फिर आएंगी, ये रात फिर आएंगी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी कुछ चुटकुले यानी फनी शेर, कुछ हंसमुख फनी शेर आज सुनाएंगे कि मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत। खूब ठीक से सुनना दोस्तों, मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत, पलट कर उसने जवाब दिया जैसे बदमाश तेरी सूरत। और दोस्तों ये सब प्यार भरी बातें आज क्यों हम लोग के बताते हैं कि कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, एक मौत ही है जिसका मैं वादा नहीं करता। ये तो सच बात है ना दोस्तों, आप सब कुछ वादा कर सकते हैं लेकिन मौत कब आ जाएगा इसका आपको और हमें मालूम नहीं है, तो वो वादा तो आप कर नहीं कर सकता है ना दोस्तों। हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, जमीन मिले तो बंजर और आदमी मिले तो खंजर। तो हम जाते हैं दोस्तों, मेरे पैरों में आम घुंघरू बांधो फिल्म के नाम है सुंगरुस नई खतीन अख्तशस्त्र का, जिसमें दिलीप कुमार ने परमा और खन्ना ने काम किया है, परमा शिन मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और मेरे पैरों में क्या बांधेंगे भैया, हड कड़ी नहीं बांधना, और जब बांध दो घुंघरी तब नाच के घुंघरू हम सुनाएंगे कि हम क्या और कैसे नाचते हैं। और दोस्तों, और यहाँ पे हम बताते हैं कि कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं कि पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कल क्यों और मिले, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ता कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। नौह के रसराज की कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कल कोई और मिले हमें तो ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। तो ये सब बात है दोस्तों, और कहते हैं मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, हट हो गई जब जब मैंने देखा वो मेरे 5 रुपया के पेन भी ले गई। तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं, और ये भी गीत है, और ये है गाम, और ये है मुकेश का और नतिगे लता मंगेशकर का ये गीत है, धीरे धीरे बोल कोई जोर से ना बोलिए नहीं कोई सुन ना ले, और जब कोई सुन ले तब बप्पा मारी, तो जोर से ना बोलिए धीरे से बोलिए।

धीरे धीरे बोल, अरे धीरे धीरे बोलियो, नहीं जब कोई सुन ले तो बप्पा मैया मारी, और अगर सुन लेगा भैया तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगे कि कहते हैं किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, किस किस का नाम ले अपने, इतना ढेर आदमी भैया जो बर्बाद करी से यहाँ बताई से, किस किस का नाम ले अपने बर्बादी में, बहुत लोग आया देने दुआएं मेरे शादी में। तो जितने लोग आए थे दुआ देने को शादी में, वो सब भाग्यदार है दोस्तों, यहाँ पे बताए गए हैं उसके बर्बादी में। आज तक समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया, दिल में तो होती ही नहीं होता, तो साला टूट का से टूट कैसे जाता है। तो दोस्तों तीसरी कसम की ओर हम बढ़ते हैं, और तीसरी कसम एक फिल्म है, वो है नहीं खती शस्त्र शस्त्र के, और वो है मैथी मुकेश ने इस गीत को गाया है, और ये बहुत पॉपुलर गीत है दोस्तों, कोई ज़माना में अभी तक लोग बहुत इसको पसंद करते हैं, तो हमने सोचा कि इसको हम चला देते हैं। कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, अभी बताएं थे ना दोस्तों, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं मत भूलना, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, और क्यों, क्योंकि कुछ रिश्ता जिंदगी भर याद आते हैं। और हम चलते हैं इस गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

और सज्जन रे, और झूठ मत बोलो, और ये झूठ बोलना कभी कभी लोग को ये धंधा हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ गीत में बताए गए हैं कि झूठ मत बोलो, अगर जो झूठ बोलेगे भैया तो कौआ काटेगे। और माइती मुकेश इस गीत को आपको सुनाए हैं, फिल्म का नाम है चीसरी कसम, फनी खती होंद इनसेसन सेस्ट। दोस्तों हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बताते चलाते हैं, बढ़ाते हैं। कहते हैं दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं। दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं। ये ग्रुप है नवाबों का, यहां कोई किसी से काम नहीं। ये भी कोई एक शायर है दोस्तों। कहते हैं रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, दिल में ख्वाबों का कमी नहीं होती। हम चाहते हैं उनको अपना बनाना, पर उसके पास अपनों को कमी नहीं होती। वो हमें चाहते हैं ना भैया, तो हम ईटा मार के पत्थर चलाकर और क्या करेंगे। तो ये बात होते हैं, और मोहब्बत करने वालों को और मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को सेवा कर। दोस्तों आप लोग बैठक गाना में ये गीत सुना होगा, कितने लोग बोले ये ओकर ऐसा गाना है, ये ओकर ऐसा गाना है। लेकिन आज हम आप लोग को एक ओरिजिनल गीत को सुनाएंगे जो नाइटिंगेल लता मंगेशकर इस गीत को गाए हैं, और फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरी आंगन की नीखतिन अख्तन जीवन तक का। और कितने हमारे सूरीनाम के कलाकारों इस गीत को गाए हैं, और अन्य देशों के कलाकार भी इस गीत को गाए हैं। और जिसको मालूम नहीं है तो वो बोले वो अडमिया गाई से, वो अडमिया नहीं दोस्तों, ये गीत हमारा दीदी स्वर्गीय और हमारा लता जी नाइती की लता मंगेशकर का ये गाया हुआ गीत जो आज हम आप लोग को ओरिजिनल सुनाएंगे, आओ मिलकर सुना जाए।

छाप तिलक सब छीन ली और मुझसे नैनाल मिलाई की। और दोस्तों उसी दिन से व्हाट्सएप से हमें नफरत हो गई। आप जानते किस लिए ना? ये व्हाट्सएप तो आज पूरा दुनिया में चलते दोस्तों। और कहते हैं उसी दिन से व्हाट्सएप से नफरत हो गई जब बाल कटवाते के लिए आदमी ने चंदा मांग लिया। ये कौन सा बात है दोस्तों? और उसके बाद हम चलते हैं प्यार भरी बातें और प्यार भरी गीत आज हम आप लोग को सुनाएंगे दोस्तों। और सुनाता ही रहेंगे। हम चलते हैं एक गीत की ओर। वो भी है नाइटिंगेल लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है। और ये मूवी का नाम फिल्म का नाम है असली और नकली। असली और नकली। और ये फिल्म बना है निहति होनेस्टक में। और यहाँ पे बताई गई है दोस्तों कि इस देवानंद ने फिल्म में काम किया है और कितने लोग हैं जिसका नाम भी देवानंद लोग फिल्म में देखकर धर देते अपनी बेटी को। और यहाँ पे बताई गई कि तुझे हम अपने जीवन की डोर से बांध लिया है, ना ततई से बांध लिया है, केती से बांध लिया है, अपने जीवन के डोरा में, मतलब अपन लीफस पार्टनर तुझे हमने बना लिया है। और फिल्म के नाम है असली और नकली। आओ मिलकर सुना जाए।

और मेरी जीवन की डोर पर। और क्या हुआ भैया, जीवन की डोर से बांध लिया है। और जीवन की डोर में कौन बांधते हैं, जब किसी से आपको आपसे प्यार हो जाता है और अपनी जिंदगी उससे और चलाना चाहते हैं और कहते हैं ऐ चांद कुछ बेवफाई के, यानी कि टूटा हुआ दिल का शेर हम आप लोग को, जुदाई का शेर आप लोग को हम। और यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि ऐ चांद चला जा क्यों आँच है मेरे चौखट पर, ऐ चांद चला जा क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गई वो शख्स जिसका, छोड़ गई वो शख्स जिसका धोखे में हमने तुझे देखता था, यानी कि उसका जो लड़की था या लड़का उसका वो चांद दिखता था, अब वो धोखा से चला गया। तो वो कहते हैं कि ये चांद असली चांद को कहते हैं जो रात को निकलते हैं, कि ऐ चांद चला जा क्यों आज को क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गया वो शख्स जिसका धोखे में हमने तुझको देखते थे। ये बात है। और कहते हैं कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, इस हाल में अक्सर जुदाई जीत जाती है। तो इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी करीबी, किशोर जी और लता जी का फिल्म का नाम है आसपास निखती हुंद एन एन तख्त का ये गीत है, जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा भी इसमें और काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

और तुझे दिल में जब हम बन कर लूंगी तब उसको चाभी हम उठाए के बोले पानी में बिक देवे, और जब पानी में हम बिक देवे तो कैसे तू दिल में से निकलिए। ये बात हुआ है हमारे दोस्तों। और दोस्तों ये गीत क्या होगा, और ये गीत है चल चमेली। अरे चल चमेली, और कहाँ चलेगा चमेली, हाँ प्रेम बाग में चल। फिल्म के नाम है क्रोधी निखते इन तख्त का, ये फिल्म है, आओ मिलकर सुना जाए।

अखंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो दोस्तों आप जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम आज फिर हमारा शुरुआत है। कुछ नई नई, कुछ पुरानी पुरानी और कुछ मीठी मीठी, स्वीटी स्वीटी, और यानी कि शेर और गाना भी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों। कि कहते हैं कि मोहब्बत किशोर, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एहसास होना चाहिए, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एक एहसास होना चाहिए, और हमें जिनसे प्यार है बस उन्हें पता होना चाहिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, आज कुछ कॉमेडियन यानी कि कुछ चुटकली शेर भी आप लोग को हम आज बताते रहेंगे। कि छोटे छोटी सपने हैं मेरी, अरे छोटी छोटी सपने हैं मेरा, छोटी सी है आशा, पूरी दुनिया पर हुकूमत हो मेरी, बस इतनी है अभिलाषा हमारे दोस्तों। तो हम चाहते हैं बारिश बन जाना, बारिश बन जाना, एक गीत की ओर आओ मिलकर बस सुना जाए।

और दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाउन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और नहीं कनाल 8 पर और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं सुन सकते हैं और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दैट वाज वेल मोर ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुरानी गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है, और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है, कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो, और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों, कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है, और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए,
1: बचाने तो मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा, सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिन नौ यानी कि जुबिन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी दोस्तों। जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव मैं प्रेम की दीवाना हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

Oh, Sanjana, I love you. Sanjana, I love you. हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और KS चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, नेहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों, और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है। और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे। और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों। मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र लोग को उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए, कि कहते हैं उम्र के रह उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जयबाद बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कमबख्त पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल के ओर। शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहां कहां ना लागे। दोस्तों फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका। दोस्तों और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 5 20 20 20, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड नंबर 520 देन हां शहर से। इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है। दोस्तों कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे झियक गई तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो, दोस्तों दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो रेडियो फोन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग। और

हुंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और दोस्तों आज भी आप लोग को हम कुछ पुरानी और मिले जुली गीत को हम सुनाएंगे, कोई बेवफाई या प्यार का शेर भी आप लोग को हम सुनाएंगे। यानी कि आजकल के ज़माना में बेवफाई एक काम हो गया दोस्तों, और बेवफाई बहुत लोग करते हैं और वो करके कभी पछताते नहीं हैं। तो जितने लोग बेवफा है उस सब के लिए हम ये गीत यहाँ से चलाएंगे, लेकिन कहेंगे जरूर तू हजार बार भी रोते तो मीना, तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत से समय दो मोहब्बत के शामिल कोई दूसरा ना हो। समझ गए ले दोस्तों कि किस्मत या मेरे इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरे इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफाई को वो इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो हम चलते हैं एक भड़कते हुए और बेवफाई गीत है, फिल्म के नाम है ओ बेवफा, जिसमें अक्षय कुमार करीना कुमार ने काम किए हैं, करीना कपूर दोस्तों और सोनू निगम इस गीत को गाया है।

फन होम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 3 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूं, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान। सपने तो हम सबको जरूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं। सुनने वालों, सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सभी जानकारी है, जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था स्वप्न विज्ञान, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और आगे आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक कारण कि जो हमें सपने आते हैं उन सब का प्राकृतिक कारण क्या है। प्राकृतिक कारणों के अनुसार कफ, पित्त, वात का परिणाम अधिक होने पर मानव को अलग अलग स्वप्न दिखाई देते हैं कि कई बार जैसे हम बीमार होते हैं उसके अनुसार भी हम सबको सपने आते हैं।

सब प्रभाव धीन, सफेद चीजें, गुफा, तारों का समूह, मेघ मंडल, स्फटिक मणि, संगमरमर, दिव्य पदार्थ, फल, यज्ञ सामग्री, यज्ञ मंडल, सुंदर आभूषण। अगर कफ की बीमारी हो तो आप सबको ऐसे सपने दिखाई देंगे ज़्यादातर। वात प्रभाव दीन, ऊंचाई पर चढ़ना, आसमान मुक्त संचार उड़ना। पित्त प्रभाव दीन, आग, पीली पृथ्वी, तक्षिण शस्त्र, जलती दिशाएं, अशोक वृक्ष, आघात गिरना, नाश्ता करना, क्रोध करना। दो स्वप्नों का परिवार।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दुःस्वप्नों का परिहार। लाल चंदन की समिध्या घी में डुबोकर 1000 गायत्री मंत्र का हवन करना। दूसरा, शुचि मूर्त होकर पूर्वाभिमुख आसन होकर अच्युत केशव विष्णु हरि सत्य जनार्दन हंस एव नारायण इन 8 नामों का उच्चारण 10 बार करें। तीसरा, भक्ति भाव से विष्णु नारायण कृष्ण माधव मधुसूदन हरि नहरि राम गोविंद दधिवामन इन 10 नामों का 100 बार जाप करें। चौथा, निष्ठापूर्वक 1000 श्री कृष्ण का जाप करें। पांचवा, शामी अद्भुत वनस्पति पूजन करें तथा सोने से पहले शामी सिराने रखें। छठा, सूर्योदय से पूर्व पूर्वाभिमुखी होकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। सातवां, शुचिमूर्त होकर ओम नमः मंत्र के साथ शिव दुर्गा गणपति कार्तिकेय दिनेश्वर धर्म गंगा तुलसी राधा लक्ष्मी सरस्वती जी का जाप करें। आठवां, ओम ही श्री काली दुर्गति नाशिने महामाया स्वाहा का 10 बार जाप करें। नौवां, ओम नमो मृत्युंजय स्वाहा का 10,00,000 जाप से साक्षात मृत्यु लौट जाती है। दसवां, प्रातः प्राणायाम करें या तगर के हरे पत्ते चबाएं। सुनने वालों, ये सब था दुख स्वप्नों का परिहार, यानी जो दुख वाले सपने होते हैं उनका निवारण कैसे करना चाहिए।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। स्वप्नों के प्रतीक। स्वप्न मानव जीवन को ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम वरदान है। यह देवी वरदान चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही मिला है, और ये खाली वरदान इंसान को ही भगवान ने दिया है, जो कि उसके मानव जीवन को सर्वोत्तम निधि कही जा सकती है। स्वप्नों का आधार काम भावना स्थिर की है। उनके अनुसार वास्तविक जीवन में जितने भी उपकरण हैं, वे दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो पुरुष चित्त प्राकृतिक और दूसरे स्त्रियोचित। पुरुषोचित प्राकृतिक, जैसे आप सब जानते हैं कि भगवान ने भी स्त्री और पुरुष दो जीव बनाए हैं, तो उसी के आधार पर शास्त्र विज्ञान भी अपना अलग अलग नीति देता है। पुरुषोचित प्राकृतिक, अस्त्र शस्त्र पुरुष वस्त्र मशीन नक्शा पुल चाबी लकड़ी पेड़ संदूक छाता आदि। और स्त्रीयोचित प्राकृतिक है दरवाजे ताला गुफा टोकरी कपड़ों के उपकरण बर्तन मशीन आदि। यह एक जीव की सृजनात्मक शक्ति का नमूना है। सिंह कभी झुंड में नहीं रहता, वह अकेले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सुनने वालों, जैसे संत कबीर जी ने कहा है कि हीरो की ओवरी नहीं मूल्य गिरा नहीं पाती, सिंगों का लहड़ा नहीं साध ना चले जमाती।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, क्यों आती है नींद हमें, कि हम मनुष्य लोगों को कभी ज़्यादा नींद आती है कभी कमती नींद आती है, इसका भी कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता होगा ना। यदि हम जागते हुए भी लेटे रहें तो भी हमारी थकान दूर हो जाती है, वैसे भी सोते समय हम पूर्णतः स्थिर नहीं रहते, हिलते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, जो मांसपेशियों की कसरत कराने के लिए करते हैं ना, ना कि उन्हें आराम देने के लिए। अतः हमारे शारीरिक नहीं अपितु मानसिक आराम की अवस्था होती है, परंतु सोते समय मस्तिष्क सुस्त नहीं वरन अधिक क्रियाशाली रहता है। सुनने वालों, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग और ज़्यादा काम करता है, और हम सोचते हैं कि शायद हम सो रहे हैं तो दिमाग भी थोड़ा शांत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम काफ़ी समय तक अकेले रहते हैं तो हमारी नींद भी काफ़ी घट जाती है, यानी जितने कम लोगों से हम मिलते हैं उसी अनुपात में हमारी नींद भी घट जाती है। वैसे हम अपने जीवन को एक तिहाई से अधिक भाग सोने में ही बिता देते हैं। नींद कई रोगों के निवारण की रामबाण औषधि है।

सुनने वालों, ये है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सामूहिक स्वप्न। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर स्वप्न देखते हैं। न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अपने सपनों को व्यक्तिगत नहीं अपितु सामूहिक घटना के रूप में ही देखते हैं और व्याख्या करते हैं कि वो इकट्ठे सपने देखते हैं और उनका फिर आपस में बातचीत करते हैं कि हमने कौन सा सपना देखा। यूरोप के एक छोटे से गांव कार्सिका में सामूहिक सपना देखने की परंपरा आज भी प्रचलित है। वहां सब लोग एक पूर्व निश्चित विषय के बारे में उसी विषय पर स्वप्न देखते हैं जो अगले दिन सुनाते हैं।

हमारी अंतरात्मा तथा हमारे स्वप्न। स्वप्न अवस्था में मस्तिष्क को चेतनात्मक पोषण मिलता है। मानवीय मन जितना शुद्ध एवं पवित्र होगा, उसका परिणाम में स्पष्ट सुखद भविष्य एवं गुण रहस्य प्रकट करने की समर्था स्वप्नों में समाविष्ट होती है। भारतीय विद्वान स्वप्न को देवी शक्ति की प्रेरणा मानते हैं। सर्वगस आत्मा हमें अपने में कुछ आदेश देती है। यह स्वर्गस आत्माएं हमें आने वाले संकटों की पूर्व सूचना भी देती है। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि कई बार सपने हमें आते हैं, जो कई बार घटना घटने वाली होती है उसके बारे में हमें संकेत भी मिल जाता है। हमारी अंतरात्मा हमारे स्वप्न के दौरान अधिक साफ शब्दों में बातचीत के अतिरिक्त और कभी नहीं करती। अंतरात्मा की आवाज़ स्वप्न के दौरान साफ सुनाई देती है। यदि हम फिर भी अपने सपनों के संदेश पर ध्यान ना दें, उन्हें समझने का प्रयास ना करें, तो हमसे अधिक मूढ़ इंसान कोई नहीं है। हमें अपने मार्गदर्शक इन सपनों को भूलकर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोग हमें सलाह दे सकते हैं, लेकिन हमारी भीतर की आवाज़ की तुलना में कम सहायक सिद्ध साबित होते हैं। हमें कोई और इतनी अच्छी तरह नहीं समझा सकता जितनी अच्छी तरह हम स्वयं समझ सकते हैं। अपनी आदतों, परेशानियों, उनके कारणों आदि को जितनी अच्छी तरह हम जानते हैं, उतनी अच्छी तरह कोई और नहीं जान सकता। सुनने वालों, वो तो हमें मालूम ही है कि सबको अपना स्वभाव, अपनी आदतें पता होती हैं, और कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं जान सकता। और दूसरा अगर जान सकता है तो वो होती है माँ। माँ बाप को पता है कि हमारे बच्चों की आदतें कैसी हैं। इसलिए हमारे सपने ही हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, हमें सर्वोत्तम मार्गदर्शन दे सकते हैं। जिस युग में लोग सपनों की भविष्यवाणी और इनके अर्थ लगाने को एक प्रकार के ज्योतिष का दर्जा देते हैं, उस काल में वे सपने संभाल कर रखते हैं। ऐसा करने के लिए ग्रीस और मिस्र में बने मंदिरों जैसी इमारतों में जाना पड़ता था। सपने देखने के उद्देश्य से गए लोग वहां जाकर कई दिनों तक आराम करते हुए विभिन्न प्रकार के व्रत, उपवास आदि रखते थे। जब सपने देखने का समय आता था तो वे सपने देखने के लिए वहीं पर सो जाते थे। सोते सोते वे सपने में किसी देवी देवता या देवदूत के आने की प्रतीक्षा करते थे। यह तो केवल विश्वास की बात है। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में भी नहीं है।

मोती यूसीप केवल गहराइयों में ही मिलेगी, उथले जल में तो केवल मछली ही मिलेगी। सपने मांगने का एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रार्थना। सुनने वालों, जैसे हम समुद्र में जाएं या कहीं भी जाएं, वहाँ पर ऊपर ऊपर मछली मिलेगी। गहराई में जाएंगे तभी हमें सीप के मोती मिलेंगे। हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, मेरी सहायता करो। आप भक्तों की पुकार सुनकर पल भर में उनकी सहायता हेतु प्रकट हो जाया करते हो। कृपा करके मुझे एक ऐसा सपना भेजने की कृपा करें जिससे मुझे अपनी समस्याओं का समाधान और सामना करने में मदद मिले। धन्यवाद। चाहे यह कोई सरल कार्य नहीं है, फिर भी प्रयत्नशील एवं कर्मठ लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। हम सब की राहें चाहे अलग अलग हो, परंतु हम सब की मंजिल केवल एक ही है। सफलता भले किसी को भी मिले, परंतु विजय तो मानवता की ही होगी। अंतरात्मा कुछ सीमा तक सचेत है और मनुष्य को गलत कार्य करने से रोकती है। जब तक शरीर में आत्मा का वास है, हमारा अस्तित्व है, और जिस पल आत्मा यह बंधन, यह पिंजरा तोड़कर उड़ गई, समझे हम भी मिट्टी में मिल गए। स्वप्न में इसे देखने का अर्थ है कि सपना देखने वाले का व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण हो गया और उसने अपनी उन्नति की चरम सीमा प्राप्त कर ली है। पुरुषों के सपनों में अंतरात्मा एक बुद्धिमान वृद्ध या महान पिता या स्त्रियों के स्वप्न में महान माता के रूप में प्रकट होती है।

सुनने वालों, ये है फहन हिंदुस्तानी रेडियो, आप सबका हिंदुस्तानी रेडियो जो आप सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम लेकर आता है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्वप्न विज्ञान। तो हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, सपनों की गूढ़ परिभाषा। इनमें शब्दों व आवाज़ की जगह दृश्यों, चिन्हों व लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इनमें हम धीरे धीरे ज्ञात अर्थों में से अधूरे, अपरिविक व अनुचित अर्थों को हटाते हुए सही अर्थ तक पहुंच जाते हैं। अगर दृश्य ना हो तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। यही दृश्य सब विचारों, बातों व संकेतों का केंद्र तथा उसका उद्गम स्थल है। दृश्य एक इंसानों के विचारों व उसके अस्तित्व का प्रतीक होता है, परंतु यह मौलिक कदापि नहीं है। यही दृश्य कुछ वास्तविकता तथा कुछ चिन्हों के रूप में हमारे स्वप्नों का निर्माण करते रहते हैं। यही स्वरूप है हमारे सपनों का। आमतौर पर दिन के समय हम अपने हृदय की बात सुनते हैं व मानते हैं, और हमारी भावनाओं का रात को ही स्वयं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। चेतन मन कहता है।

मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अस्वर हो सो साधु कोई एक। जागते समय भले ही दिमाग जीत जाए, परंतु सोते समय मन की ही विजय होती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों व आविष्कारों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे बहुत सोते थे, प्रायः दिन के समय भी। कई बार हमें अपने मस्तिष्क से संगणक अर्थात कंप्यूटर की तरह इनसे भी सपने व मदद मांगनी पड़ती है।

बौद्ध धर्म तथा स्वपन। इस धर्म की सपनों से पहचान इसके प्रवर्तक सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व ही हो गई थी। जब लुम्बिनी में सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व ही उनकी माता रानी महामाया को स्वप्न में एक दिव्य सफ़ेद हाथी दिखाई दिया था। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि विलियम वार्ड्सवर्थ का विचार था, जीवन एक स्वप्न है, केवल एक स्वप्न। जिस विश्व में हम विचरण करते हैं उसके अतिरिक्त एक धारा पर एक और भी अदृश्य विश्व है जिसमें देवता या आत्माएं विचरण करती हैं। यहाँ पर हम अपने मृत रिश्तेदारों के साथ मानसिक संपर्क स्थापित करते हैं जिससे वे हम पर प्रसन्न रहें तथा हमारा ध्यान रखें और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें और रक्षा करते रहें। हमारे अंतिम समय में प्रायः हमारे कर्म प्रतीक रूप में हमारे सामने आते हैं।

सुनने वालों, यहाँ तक था आज का प्रोग्राम। अगली बार मैं आपके साथ फिर उपस्थित होंगी और सपनों के बारे में थोड़ा सा और आपको जानकारी मिलेगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: नहीं मिल पा रहा है, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज फिर हम सब उपस्थित हैं और कुछ न कुछ संदेश लेकर आज हम सब फिर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हमारे साथ जो शांता जी इस समय भी तैयार हो चुके हैं, राजेंद्र जी जो अपना कार्यक्रम पैनल के पीछे से कर रहे हैं, पहले कहते हैं शांता जी से कुछ कहे और फिर आप कह के हम सब कार्यक्रम को शुरुआत धीरे धीरे से करेंगे।
1: मेरी आवाज के प्यारे सुनने वालों, फाहुन रेडियो के सारे सुनने वालों को मेरी यानी कि शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम होवे। हम आप सबको स्वागत करते हैं ज्योति का प्रकाश के प्रोग्राम में। आप जरूर से बने रहे और इसमें जो हम यहाँ से प्रोग्राम चलाएंगे आप इससे जरूर कुछ फायदा उठाएंगे।
2: फाहुन रेडियो के श्रोतागणों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जैसे कि आप कुछ न कुछ नया सुनने को पाते हैं, आज भी हमारा एक विषय है, वो भी बहुत अच्छा विषय है, कर्म भोग। और इसके बाद गंगा का विषय रहेगा जो कि बहुत ही एक पवित्र गंगा एक नदी है भारत में, और वो गौमुख से लेके और गंगा सागर तक जाती है, बहुत लंबी नदी है, उसके विषय में काफ़ी सारी बातें करेंगे। अब बताइए संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं?
0: आज का विषय ये है कि हम सब पहले कर्म भोग उसके बारे में जरूर वार्तालाप करेंगे जो हमारे विशेषज्ञ लोग खोज करके हम सबके लिए तैयार रखे हैं। तो आप पहले उनके उदासी मन के लिए क्या करने वाले हैं?
2: हाँ, उनके उदासी मन के लिए वही हमारा जैसे पुराना एक तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करी, वही वाला गाना चला के सबका मन उदासी से हट जाता है।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। तो गंगाराम जी का अभी मैसेज आ रहा है कि उदासी उनका मन बहुत उदास हो गया है, क्योंकि उनके मन की जो कोई था यहाँ पे वो चले गए हैं, तो इसलिए उनको उदासी होना पड़ा। कोई बात नहीं पंडित जी, आप गीत को सुन के अपना मन को उदासी मत कीजिए, आप थोड़ा सब्र रखिए, कुछ दिन बाद आपका उदास दूर हो जाएगा। एक 5 दिन की बात हो रही गई। संजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: जरूर कहना चाहूँगा राजेंद्र जी, जब हम सब यहाँ उपस्थित है और जैसे सुन रही हूँ कि पंडित जी को और थोड़ा से मन उदास है, तो बस ये कहना चाहूँगा कि संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है, संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद रखो और अच्छे कर्मों की किश्त समय से भरते रहो। आज का विषय जो आपने रखे है राजेंद्र जी, जो हमारे साथ उपस्थित हो करके और यहाँ पर अभी हम सब माँ गंगा की महिमा, जो हम सब यहाँ से जा कर के भारत में जा कर के दिल्ली में उतर करके और फिर जाते हैं हरिद्वार में जा कर के वहाँ डुबकियाँ लगाते हैं, और डुबकियाँ लगाने से क्या हम सबका पाप धुल जाएगा राजेंद्र जी या नहीं?
0: हाँ, सब लोग कोशिश तो यही करते हैं कि हम लोग एक बार गंगा में स्नान कर दे तो पाप धुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है,
1: क्योंकि कुछ
0: माँ फली सुकदाचन, कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। आप बुरे कर्म करो और एक बार गंगा चले जाओ कि कोई बात नहीं मेरे पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन एक मन में विश्वास तो है ही है।
1: तो राजेंद्र जी, अभी हमारे मैं जब जैसे देख रहा हूँ शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं। शांता जी, आप क्या कहने वाले हैं? आप हरिद्वार जाने वाले हो?
2: मैं तो हरिद्वार में हूँ, क्योंकि ये प्रसंग जो हम यहाँ चला रहे हैं तो यहाँ पे पवित्र हो गए मेरे ख्याल से। मेरी को ऐसे लगता है कि हम हरिद्वार में, क्योंकि
1: शांता जी
2: आप सुनेंगे।
1: जरूर हरिद्वार में आप है, पर हमारे पास आए एक आपका फैन का और टेलीफोन।
2: हाँ जी।
1: और टेलीफोन के बाद बोले भाई जल्द से जल्द मुझे आकर मिलो।
2: अच्छा जी।
1: तो मैं जा कर के श्रीमती लक्ष्मण जी के पास और जा कर के मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जब आए तो बाहर आए। बोले शांता जी जब स्टूडियो में आ जाए है तो बाहर आ जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे शांता जी के लिए, अभी तो हमने उसे देखा भी कभी नहीं, पर सिर्फ उसके आवाज़ को सुन करके इतना प्रसन्न हो रहे हो, तो आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजे है, तो मैं आपको ये गिफ्ट को दे रहा हूँ। मफ्राओ लक्ष्मण जी, इतने सारे ड्रिंक यानी कि पानी का बोतल ढेर सारे भेज दिए हैं यहाँ फाहोन हिंदुस्तानी स्टूडियो में। तो मफ्राओ लक्ष्मण जी को हार्दिक से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सब के सोचे और इसी प्रकार से हम सब का हौसला जरूर बढ़ते हैं, और हौसला बढ़ता रहेगा, और हम सब भी ऐसा और स्टूडियो में आकर अपने ओर से सेवा को जरूर करेंगे। अभी जब राजेंद्र जी हम सबको संदेश को सुनाने वाले हैं कि हमें गंगा स्नान करने तो जरूर चाहिए, पर गंगा स्नान करने से पहले राजेंद्र जी संदेश उससे पहले क्या है?
0: गंगा स्नान का जो संदेश है वो तो बाद में है, लेकिन उससे पहले जो संदेश है वो है कर्म भोग।
1: तो हमें ध्यान देना अपने जीवन में किस पे कर्म, यानी कि कौन सा कर्म करे ना।
0: जी,
2: पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कर्म भोग, हमारे सुनने वाले सोचेंगे कि सूरीनाम भी एक जगह है कर्म भोग, तो वो वाला कर्म भोग हम नहीं कहेंगे यहाँ पे एक।
1: ठहरो राजेंद्र जी, बटम मत बुताना, क्योंकि कर्म भोग सूरीनाम में एक स्थान है,
2: एक जगह है,
1: और एक स्थान जहाँ जिसे कहते हैं कर्म भोग, तो वो उसको बोलते हैं क्रोनमबर्ग।
2: अच्छा, देखो
1: हाँ, तो वहाँ पर और नाव से जाना पड़ता है ना।
2: अच्छा,
1: पर क्रोनमबर्ग के बात ये नहीं है, ये कर्मों का और अपने कर्मों करने का, और उन्हें जो काम करेंगे उसी का हमें भोगना पड़ेगा या भुगतने पड़ेगा।
2: अच्छा,
1: इसमें दो बात हो जाता है ना,
2: स्पर्श हो गया हाँ, कि हाँ, ये
1: कि जो बढ़िया काम करेंगे तो उसे प्राप्ति होगा शुभ कार्य, और जो बुरा काम करेंगे तो क्या मिलने वाले। राजेंद्र जी ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि हम एक सुंदर सा गीत के ओर पहले चला देते हैं, तो फिर उसके बाद में कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा।
0: हाँ, जरूर उसी ओर बढ़ते हैं।

0: मानो तो गंगा जल है, न मानो तो बहता पानी। बहुत ही अच्छा आपने अभी जो सुना, बहुत ही अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं कर्म भोग की तरफ। आज बात करते हैं कर्म भोग की। पूर्व जन्मों में कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनमें कुछ लेना होता है।
1: राजेंद्र जी, यानी कि पूर्व जन्मों के कर्मों के हेतार्थ हम लोग परिवार में जन्म लेते हैं।
0: हाँ, पूर्व जन्म का ही रहता है सब।
1: ऐसा बात है?
0: ऐसा, हाँ, कर्म के अनुसार।
2: अच्छा,
0: संतान के रूप में कौन आता है, वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में चार प्रकार से बताया गया है। ऋणानुबंध, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ में कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए।
1: अरे बाप, राजेंद्र जी, इसको क्या कहते हैं?
0: ऋणानुबंध।
1: ऋणानुबंध,
0: हाँ। ऋण मतलब जो हमने आपको कुछ दिया और आपने लौटाया नहीं, तो कर्जा,
2: कर्जा, कर्जदार,
0: कर्जदार, ऋण हो गया।
1: ओ, तो हमने जो कर्जा नहीं लौटा रहा तो ये भरना पड़ेगा,
0: ऋणानुबंध हो जाएंगे आप, भरना पड़ेगा, अगले जन्म में भरना पड़ेगा, लेकिन कभी ना कभी भरना जरूर पड़ेगा, इसलिए ना चाहे किसी का कर्जा रखना,
1: ना ले वे। दोस्तों, ये बात सुन के तो मुझे थोड़ा से,
2: राजेंद्र जी, कर्जा का मतलब ये पैसा थोड़ी होता है?
0: कुछ भी चीज आपने, पैसा तो ज्यादा होता है। कुछ भी आपने किसी को चीज दिया और वो उसने आपको उसके, आपने दिया उसको कुछ समय के लिए, लेकिन आपने उसने वापस नहीं किया और आप मांगते रह गए लेकिन नहीं दिया, लेकिन उसको फिर वो अगले जन्म में देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा।
1: दोस्तों, ये बात सुन के तो थोड़ा थोड़ा से शायद किसी किसी को डर भी लगने लगा होगा, पर राजेंद्र जी,
2: पर अच्छा है, जो भी ऋण होगा ना, तो ये जो सुनते हो तो वो जल्दी से चुका देगा।
0: हाँ, वो जल्दी से चुका देगा। दूसरा आता है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा, हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, वह उन्हें दुखी रहकर रखकर सुख खुश होगा।
2: ये सब तो होता है।
0: हाँ, तो पिछले जन्म का कुछ ना कुछ रहता है, इसलिए होता है।
2: देखने में मिलते हैं ये सब
1: बिल्कुल देखने में मिलते हैं। और सही बात कह रहे हैं शांता जी कि शत्रु पुत्र, यानी कि इसी कारण ये सब होता है। ऐसा होता है जो हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में सभी प्रकार से और पुत्र जो सुपुत्र को रहे, पर कभी कभी ऐसा होता है और देखने को जरूर ऐसा होता है शांता जी।
2: पर अभी जैसे राजेंद्र जी ने कहा, ये जो लड़का जो नालायक होते हैं ना, इसे कहते, तो इसमें दोष किसका है? माता पिता के।
0: हाँ, वो पूर्व जन्म का कोई
2: पूर्व जन्म के, तब ऐसे ही लड़का उसके घर में जन्म ली।
0: हाँ,
2: तो ऐसे में क्या करना चाहिए? थोड़ा से कुछ
0: कर्जा किसी का नहीं रखना चाहिए, किसी
1: कर्जा
0: भी जन्म
1: कुछ
0: का।
1: ना करो तो ऐसा होएगा नहीं। हाँ, तो राजेंद्र जी, और आगे क्या कह रहे हो आप? क्योंकि
0: उदासीन पुत्र।
1: राजेंद्र जी, मैं अगर आपसे ये कह दूं कि अभी हमारे साथ जो कनेक्ट होने वाले हैं, ये कार्यक्रम में हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं जो गंगा नहान, माँ गंगा नहान का कार्यक्रम अभी प्रारंभ होने वाले हैं और अभी कुछ संदेश आगे से बताया जा रहा है, तो हमें और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी गीता नेगी, जो जहाँ से गंगा का उत्पत्ति हुआ है, ग्रिशुपुरी गढ़वाल से, अभी हम सब के साथ और हम सब उसे और मिलेंगे और वहाँ का वृतांत, यानी कि माँ गंगा का पूरा वृतांत सुनेंगे उसी के मुख से। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक और इसी पुत्र के बारे में बता दें, तो हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर माँ गंगा के ओर हम सब कार्यक्रम में बढ़ पाएंगे।
0: हाँ, जरूर। तीसरा है उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और न ही कोई सुख देती है, बस उसको उनके हाल पर ही मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर या माता पिता से अलग हो जाते हैं।
1: ओहो, ये तो बस जानी पहचानी से बात होता है।
2: सब जानी पहचानी है
1: राजेंद्र जी, ये तो जानी पहचानी से बात हो जाता है कि उदासीन पुत्र का वृतांत।
0: हाँ।
1: कि माता पिता से और छोड़ करके भाग जाते,
2: चले जाते। हाँ।
1: चले जाते, अच्छा शब्द तो यही कि चले जाते। चलो और आगे का क्या वृतांत है राजेंद्र जी?
0: आगे का वृतांत है सेवक पुत्र।
1: सेवक पुत्र,
0: हाँ, सेवक पुत्र का मतलब है पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी ही सेवा का ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बनकर आता है और आपकी सेवा करता है। जो बोया है वही तो काटे हुए। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। आप यह ना समझे कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन चार प्रकार से कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थ भाव बस पालकर उसको दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा और आपसे बदला लेगा।
1: अरे बाप, शांता जी, ये सुन के तो हमें तो थोड़ा से और भी घबराहट आने लगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो हम जानते, देखो हमारे जेनरेशन वाला ने सूरीनाम में सभी के घर पे गाय होते थे और गाय का सेवन होता था, पर कभी काल के बस गाय अपना मन मानी करे और हम दे, हमें जल्दी होते थे तो कुछ ना कुछ किया है जो पैरों का रस्सी से बांध दिया जाता था और दूध लगाने को, क्योंकि ऐसा होता था वहाँ, क्योंकि जल्दी होते थे। और यहाँ लिखा है जैसे कि आपने अभी हम सबको सुनाए हैं कि गाय जो निस्वार्थ, यानी कि जो अपने गाय का सेवा, जो
0: निस्वार्थ मतलब बगैर किसी स्वार्थ की भावना के, स्वार्थ नहीं है लेकिन फिर भी सेवा और निस्वार्थ भाव बोलते हैं,
1: निस्वार्थ।
0: हाँ।
1: और किया है तो उसका भी दंड मिलना है।
0: हाँ, इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपये दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए। यदि आपने किसी को 1 रुपये छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। जरा सोचिए आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही खा कमा लेगी। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके चैन लेगी। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा भी तो सिर्फ नेकियाँ ही जाएंगी, इसलिए जितना भी हो सके नेकी करो, सत्कर्म करो। नेकी मतलब अच्छे कार्य करो
1: राजेंद्र जी, और अच्छा संदेश आपने दिए। जरूर हम आगे बढ़ूंगा कार्यक्रम से, पर एक गीत के ओर चलते हैं कि देखते हैं राजेंद्र जी इस समय हमारे प्लेयर पे क्या रखने वाले हैं।
0: जो आपने अभी कहा कि नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, तो वही रखेंगे, क्योंकि वो आपने कह दिया तो वही रखना ही पड़ेगा। आप तो
3: Thank you.

0: इस समय हम लोग कनेक्ट करने को कोशिश कर रहे हैं भारत देश से, तो इस समय हमारे कनेक्टिंग हो गई है राजेंद्र जी भारत श्री गीता नेगी जी से।
1: हाँ गीता नेगी जी आप जुड़ चुकी हैं।
2: हेलो।
1: हाँ गीता नेगी जी आप जुड़ चुकी हैं।
2: हाँ जी हाँ जी।
1: हाँ तो हमारे भारत से आज हमारा जो विषय है वो गंगा के ऊपर है और गीता जी इसमें जुड़ चुकी हैं। गीता जी पौड़ी गढ़वाल से खिरसू ग्राम से है और गंगा के बहुत नज़दीक से है, तो मुझे लगा कि वो नज़दीक से है तो बहुत अच्छे से गंगा के बारे में बता पाएंगी। तो आप बताइए गीता जी, आपका गंगा के बारे में क्या विचार है और क्या जानकारी देना चाहती है? फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी योर शो एंड
1: आप हिंदी में भी बोल सकती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदी और डच समझते हैं।
2: थैंक यू मुझे गंगा के बारे में बोलने का मौका देने के लिए। वैसे तो इंडिया में या इंडिया के बाहर जितनी भी रिवर्स हैं नदियाँ हैं सभी बहुत अपने में विशिष्ट होती हैं और सभी ब्लेसिंग्स हैं गॉड की तरफ से हम एग्जिस्टेंस के लिए मैनकाइंड के लिए और लाइफ के लिए। और वैसे भी गंगा रिवर को लाइफ लाइन भी बोला गया है इंडिया के कॉन्टेक्ट में। तो अभी आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है आमंत्रित किया है गंगा के बारे में बोलने के लिए, तो मैं उनके कुछ पॉइंट्स रखूँगी, मैथोलॉजिकल पॉइंट्स फिजिकल पॉइंट्स स्पिरिचुअल और साइंटिफिक भी थोड़ा बहुत। तो अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं।
1: हाँ जरूर, आपने जो पॉइंट बनाए हैं और जो कहना चाहती हैं जरूर हमको जानकारी दीजिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग श्रोता हैं, जो 35,000 लोग इस समय आपको सुन रहे हैं, 162 कंट्री में आपको सुन रहे हैं लोग, आप बताइए।
2: फिजिकल वे से मैं स्टार्ट करूँगी। फिजिकल वे में जैसे मैंने कहा कि गंगा रिवर को लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये सबसे लंबी रिवर है, इंडिया में सबसे लंबी रिवर है। इसकी लेंथ जो है वो 2525 किलोमीटर है और ये ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स को कवर करती है। इसका जो कैचमेंट एरिया है ये बहुत ही वाइड है। इंडिया के सभी रिवर्स में से सबसे बड़ा इसका कैचमेंट एरिया या बेसिन कह सकते हैं वो सबसे बड़ा है। तो और प्रॉपर तरीके से जहाँ जहाँ ये फ्लो करती है तो 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ ये फ्लो करके सुंदरबन डेल्टा से बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। और सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और
1: सुंदरबन कहाँ पे है?
2: सुंदरबन जैसे जब गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया है उसे बे ऑफ बंगाल सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा यानी कि जब एक रिवर मेनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिफरेंट स्ट्रीम में, डिफरेंट नदियों में डिस्ट्रीब्यूट होके और वो समुद्र में गिरती है, उसे डेल्टा बोला जाता है। तो सुंदरबन दुनिया का ही यही कहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी है और यहाँ पे बहुत डॉल्फिन जो फिश होती है वो भी बहुत अच्छे बहुत संख्या में पाई जाती है, जो ताजे पानी की फिश जिसे बोल रहे हैं वो भी पाई जाती है। ये इसी मुहाने पे मिलती है और किसी रिवर में डॉल्फिन नहीं पाई जाती है, गंगा के सुंदरबन डेल्टा के नियर बाय
0: गंगा का उत्पत्ति हुआ है वहाँ से आप हम सबको और ये संदेश को सुना रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमें बताया गया और हम जानते हैं क्योंकि दुनिया के हर एक कोना हर एक देशों में से और लोग यहाँ से निकल करके और गंगा स्नान करने को जाते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या और

0: से रिवर्स का जेनरेट रिवर्स निकलती हैं वहाँ से, उनका उद्गम स्थान जो बोला जाता है। वैसे तो डिफरेंट टाइप से नदियों का उद्गम होता है, प्लेट्यूज के थ्रू होता है डिफरेंट वे से, लेकिन जो ये ग्लेशियर है इनसे भी, गंगा जो हमारी रिवर है वो ग्लेशियर से उद्गम हुआ है उनका। तो सबसे पहले ये सतोपन ग्लेशियर से निकलती है, वहाँ पे इनका नाम, इसका नाम विष्णु गंगा होता है। और एक स्ट्रीम धौली गंगा होती है जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी होती है, वो विष्णु प्रयाग में मीट करते हैं, उनका कॉन्फ्लुएंस विष्णु प्रयाग में होता है। फिर वहाँ से इसको अलकनंदा नाम से बुलाया जाता है, अलकनंदा यहाँ से और देवप्रयाग तक इसे अलकनंदा ही कहा जाता है।
1: तो देवप्रयाग में जब दोनों नदियाँ इकट्ठी हो जाती है, दोनों नदियों का क्या क्या नाम है, एक का अलकनंदा और दूसरी का?
0: मैं थोड़ा पहले से बोलूंगी, जहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है तो फर्स्ट पॉइंट पे विष्णु प्रयाग बनता है
1: जी।
0: सेकंड जगह पे जब नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा स्ट्रीम से तो उसे नंद प्रयाग बोलते हैं। और थर्ड जो लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है जैसे पिंडार होता है, वो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है।
1: कर्ण प्रयाग वही जगह है जहाँ पे कर्ण के नाम से बनाया गया है?
0: हाँ जी हाँ जी, वही आध्यात्मिक में भी महाभारत के जो कर्ण है वो यही वाला प्लेस है। उनका जो विष्णु भगवान जी थे उन्होंने अपने हाथ में उनको, उनकी चिता को जलाया था ऐसे कहा जाता है।
1: तो उन्होंने अपने हाथ में, भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में क्यों जलाया था कर्ण को?
0: उन्होंने, कर्ण ने उनसे एक वो अपनी इच्छा व्यक्त की थी मरते समय कि दुनिया में ऐसी जगह में मुझे, इतनी पवित्र जगह में आप जलाएं जहाँ पे किसी की मृत्यु कभी नहीं हुई हो। तो दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि चाहे वो इंसेक्ट हो, वायरस हो, कुछ भी हो, हर जगह प्राण उपस्थित था। तो ऐसा कोई प्लेस नहीं था जहाँ पे कोई मरा ना हो। तो इसीलिए उन्होंने साक्षात, जिसे वैकुंठ भी बोलते हैं, तो अपने आप के, अपने ही हाथों में उनका मतलब
1: अपने हाथों में उनका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि और फिर वो कर्ण प्रयाग वो जगह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गंगा की तरफ।
0: वहाँ पे उनका मंदिर बनाया गया है उनके मेमोरी के लिए।
1: हाँ, मैं उस मंदिर गया हूँ और नीचे बहुत बड़ा एक पत्थर है, उसके ऊपर वो मंदिर है, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे
0: जी। फिर वो पिंडारी रिवर जब अलकनंदा से मिलती है तो कर्ण प्रयाग में मिलती है, उसके बाद अलकनंदा स्ट्रीम जब रुद्रप्रयाग में मिलती है, वो मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से फ्लो करती है, मंदाकिनी वो रुद्रप्रयाग में मीट करती है अलकनंदा से। और फिर ये स्ट्रीम अलकनंदा हमारे श्रीनगर से होते हुए देवप्रयाग में जाती है, और देवप्रयाग में एक स्ट्रीम जो गंगोत्री ग्लेशियर है उससे निकलती है भागीरथी, तो वो स्ट्रीम भी देवप्रयाग में मीट करती है। तो दोनों का कलर बहुत अलग होता है, कभी एक ग्रीन कलर की होती है, कभी एक मटमैले किसी कलर की होती है।
1: हाँ, मैंने देखा है वो स्थान, एक ग्रीन कलर की और दूसरा एकदम पानी अलग दिखता है, और जब दोनों मिल जाती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है, और वहाँ से वो गंगा बनती है।
0: हाँ जी, बस यही एक पॉइंट है जहाँ से इसका नाम गंगा दिया गया है। यहाँ से फिर हरिद्वार तक तो पहाड़ों से ही एंटर करती है, लेकिन जब हरिद्वार के बाद से वो प्लेन में एंटर कर जाती है, इससे पहले तो पहाड़ों से होते हुए, पहाड़ों के बीच से होते हुए निकलती है, और हरिद्वार से वो प्लेन में एंटर कर जाती है।
1: तो हरिद्वार से होते हुए गढ़गंगा, गढ़मुक्तेश्वर से होते हुए कौन कौन से स्थानों से गंगा, गंगा सागर में जाके मिलती है इतना लंबा सफर करते हुए?
0: बहुत ज़्यादा, मतलब यूपी को पूरा क्रॉस करते हुए, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इन सब को कवर करते हुए जाते हैं।
1: और फिर ये मैंने देखा है कलकत्ता में, कलकत्ता से होते हुए लास्ट और बहुत विशाल रूप लेके वहाँ गंगा सागर में, समुद्र में मिल जाती।
0: और जितने भी जैसे काशी, वो तीर्थ स्थान है, वो सब गंगा के किनारे बनाए थे।
1: हाँ, हर स्थान गंगा के किनारे बने हैं। और जो तीन नदियों का जो संगम होता है इलाहाबाद में, कौन कौन सी तीन नदियाँ बताई गई हैं?
0: इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो गया सर, उसे प्रयागराज बोलते हैं।
1: हाँ, अब इलाहाबाद नहीं, अब प्रयागराज हो चुका है, और पहले प्रयागराज ही था, बीच में इलाहाबाद बना दिया था, अभी सुधार हुआ है। तो वो तो उन लोगों की है जिन्होंने किया होगा, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसा जो है वो तो रहेगा। और
0: गंगा, यमुना, सरस्वती, वहाँ पे उन तीनों का संगम।
1: हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि गंगा यमुना तो दिखती है दोनों नदियाँ वहाँ पे भी, जैसे आपने बोला कि दो नदी यहाँ पे मिलती है जहाँ से गंगा बनती है,
0: कलर की वजह से।
1: रुद्रप्रयाग नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, नीचे रुद्रप्रयाग के, वो नीचे जो स्थान है जहाँ से गंगा बनती है,
0: देवप्रयाग,
1: देवप्रयाग में, वैसे ही इलाहाबाद में।

0: दोनों तीन नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती का अंदर ही अंदर वो आती हैं और एकदम वहाँ पे मिल जाती है। मैंने सुना है कि जो बहुत विद्वान है, भाग्यशाली लोग हैं, उन्हीं को सरस्वती के दर्शन होते हैं वहाँ पे, और बाद बाकी लोगों को नहीं हो पाते, गंगा यमुना के ही होते हैं। क्या ऐसा है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी?
1: हाँ, हमने भी ऐसे ही मतलब पढ़ा है, लेकिन कुछ आध्यात्मिक वे से भी ऐसे भी कहा जाता है कि सरस्वती वो श्रापित नदी है, इसलिए वो हिडन हो गई थी, वो दिखाई नहीं देती थी, और वो बहुत पहले से अंडर वाटर मतलब अर्थ के अंदर से होते हुए वहाँ पे मीट करती है।
0: हाँ, मैंने देखा है, बद्रीनाथ के ऊपर एक जगह है, उसको बोलते हैं भीम पुल। भीम पुल के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो लोग सब वहाँ पानी भी भरते हैं, उस पानी को पीते भी है, वहीं से अंडरग्राउंड हो जाती है और इलाहाबाद में बाहर निकलती है। तो वहाँ पे दर्शन करने लोग उस जगह पे जाते हैं। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊपर तक गाड़ी जाती है, 1 किलोमीटर और ऊपर पैदल जाना पड़ता है। उसी के बगल में गणेश गुफा, ब्यास गुफा, जब जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो पुराण लिखे गए थे, उन्हीं जगह पे है। और भीम पुल, वहाँ से भीम ने एक पत्थर रख दिया था उस नदी के ऊपर, वो पुल बन गया था। इसके बाद डायरेक्ट ऊपर जाते हुए वहीं से स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी हैं बहुत आगे जाके। ये सब बहुत अच्छा है, मैंने देखा भी है, और मैं आपने भी देखा होगा, भारत की हैं तो ज़रूर देखा होगा। तो और कुछ जानकारी इस बारे में आप देना चाहती हैं गंगा के विषय में?
1: गंगा के विषय में, हाँ, गंगा का ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा 25% इंक्रीज हो जाती है। कुछ वायरसेस होते हैं जो दुनिया के किसी भी रिवर में नहीं मिलते हैं, बैक्टीरियोफेज उनको बोलते हैं, जो कि मतलब दुनिया में कहीं पर भी, यहाँ तक कि जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें भी नहीं पाई जाती हैं, या कहीं से भी बारिश का पानी हो या कुछ भी हो, कहीं से भी ये वायरसेस नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जैसे गंगा में ये पाए जाते हैं, इसकी वजह से उसके ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो एक एल्केमी का काम करता है। एल्केमी मीन्स
0: अल्कलाइन, जो वाटर होते हैं
1: अल्कलाइन, हाँ, मतलब एक डिस्टिल्ड कर देता है वाटर को, और उसकी विशेषता इतनी गुने ज़्यादा बढ़ा देता है कि वो कैपेसिटी दुनिया की किसी भी नदी में नहीं पाई जाती है। और स्पिरिचुअल वे में भी कहा जाता है कि मोक्ष पाने के लिए जैसे अगर किसी के अस्थियों को डाल दिया जाए उसमें, तो बहुत जल्दी वो पूरी तरह से ऐसे गल जाती हैं कुछ ही टाइम में, कि वो जो एक एनलाइटन की स्टेट होती है वो मिल जाता है उनको। और वैसे करोड़ों साल लग जाते हैं तो वो चीज़ें अचीव नहीं हो पाती, लेकिन गंगा के पानी में वो चीज़ें हैं, वो विशेषता है जो कि एनलाइटन तक पहुँचा देती है।
0: और मैंने सुना कि गंगा का पानी कभी ख़राब भी नहीं होता, चाहे आप कितने भी बरसों तक रखे, उसका क्या कारण है साइंटिफिक वे में और आध्यात्मिक वे में भी, दोनों प्रकार से आप बताएंगे?
1: साइंटिफिक वे में तो यही है कि जो वायरसेस हैं वो क्या करते हैं कि वो सेल्फ क्लीनिंग क्वालिटी करते हैं, वो सेल्फ प्यूरिफाइंग क्वालिटी को लिए हुए होते हैं, वो कभी गंदा होते ही नहीं है। आई थिंक जो भी डर्ट होता है, कुछ होता है, वो उसको नश करके उसे फिर से प्योर कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद गीता,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: नेगी जी जो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो भारत से और घिरसू पूरी गढ़वाल से हम सबके लिए अपना काफी जानकारी दिए हैं, हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है गीता जी को।
1: थैंक यू।

0: रहा हूँ हिंदुस्तानी रेडियो। बहुत ही अच्छा आपने अभी जो सुना गीता जी के बारे में, गीता जी ने जो संदेश दिया आज हमारे रेडियो पे गंगा के बारे में, बहुत ही अच्छा दिया। और उन्होंने सारे वृतांत बताए गंगा के, कहाँ से शुरू, कैसे कैसे, कहाँ से नदी, कहाँ से कौन मिलती है, उसके लिए बहुत ही बहुत गीता जी को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
1: जरूर कहना चाहूँगा राजेंद्र जी, जो कि गीता जी जो संदेश दिए है ना, तो ऐसे गंगा हम जानते हैं कि माँ गंगा नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। माँ गंगा जैसे गायों में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं कामधेनु, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं नारद ऋषि, और इसी प्रकार से नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा। पर जो जानकारी गीता जी हम सबको दिए हैं वो हमें बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें दुनिया के हर एक कोना से, दुनिया के जहाँ लोग कहते हैं ना, जहाँ पर हवा है और जहाँ पानी है वहाँ हिंदुस्तानी भी है, तो जहाँ हिंदुस्तानी है सबका मन में यही इच्छा होता है कि मैं कोई ना कोई कारण तो बस कुछ ना कुछ पाप हुआ होगा, और ऐसा ना हो कि हमें अपना उसे पाप को और भुगतने पड़े, तो जरूर ये इच्छा करते हैं। और कितने लोग तो भी भारत देश जा चुके हैं राजेंद्र जी, और माँ गंगा का दर्शन हम जरूर कर सके। तो राजेंद्र जी, शांता जी भी की कह रहे हैं कि वो तो इस समय गंगा स्नान कर रहे हैं अपने सेवा के माध्यम से, तो शांता जी आप कुछ कहे, और मुझे नहीं पता कि कौन सा गीत आज आप अपने पिटारा से भर के लेकर आए हैं।
0: शांता जी, आप कुछ गीता जी के बारे में कहना चाहेंगे?
2: मुझे बहुत खुशी हुई कि एकदम भारत से वो डेढ़ का फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के स्टूडियो में आई और अपना जो संदेशा है गंगोत्री के बारे में, गंगा के बारे में जो बताई, तो बहुत अच्छा लगा।
0: आप भी तो गंगोत्री गए हैं ना,
2: इसलिए तो मैं वहाँ पे सैर करती हूँ। इसलिए
0: अभी भी सैर कर रहे हो आप वहाँ पे?
2: या जी, मैं ऐसे ही स्पर्श देखती हूँ गौमुख को। गौमुख भी गए गंगोत्री से। गौमुख जाने के लिए 18 किलोमीटर लगता है चलने में।
0: हाँ, तो बहुत अच्छा। कितना समय लगा था आपको गौमुख में जाने के लिए?
2: पूरे दिन हम गए, हम सुबह में निकल गए और
0: रुके कहाँ पे थे, भोजपाशा में कि कौन सी जगह पे?
2: हम भोजपाशा में, वहाँ पे हमने थोड़ा भोजन के, थोड़ा आराम के, तो वहाँ से हम गए गौमुख के बारे में।
0: तो मैं गया था गंगोत्री से 5 बजे सुबह ऊपर गौमुख के लिए, और वापस आ गया 3 बजे नीचे सेम दिन, तो इतना जल्दी मैंने कवर कर लिया था।
2: नहीं नहीं, हम भी सेम डे हम भी वापस आ गए, पर एक जगह हम रुके थे सिर्फ आराम करने के लिए और भोजन करने के लिए।
0: ओ, तो बहुत अच्छा, भूख लगता है जब आप उस स्थान पे पहुंचते हैं।
2: पर गलती की मैंने भोजन की
0: नहीं, मैंने जाते समय तो भोजन नहीं किया, लेकिन मैंने आते समय थोड़ा कुछ हल्का सा ले लिया था, और फिर मैं जब गंगोत्री आया तो तभी भोजन हुआ, और जब मैं सोया मैं थोड़ा सोचा कि मैं और नीचे की तरफ चले जाऊँ, लेकिन जब मैं थोड़ा सोने की कोशिश करा, थोड़ा नहीं सोया गया कि सुबह ही हो गई, पता चला कि सुबह हो गई, अब चलो अगले दिन चलते हैं।
2: पर गौमुख जो है, जो इसका दर्शन कर ली है, बेशब्द हो जाओगे, इतना आनंद आते हैं वहाँ। और अच्छा लगता है देखने की गौमुख जहाँ है ना, वहाँ पे ग्लेशियर जो होता है ना,
1: जैसे कि अभी गीता जी ने हम सबको बताया
2: जी, ग्लेशियर ऐसे इतने नहीं, हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे।
0: हाँ, वो ग्लेशियर जो होते हैं बर्फ के एकदम, कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ मत जाओ, ग्लेशियर कभी भी गिरते हैं और उसमें कई लोग मर जाते हैं, लेकिन हमने कहा कि हम तो वहीं स्नान करेंगे जहाँ पे ग्लेशियर गिरता है।
2: मैं भी वही की, पर ये बात कहती हूँ कि जहाँ ग्लेशियर ना और उसके आसपास जो है वो पर्वत है।
0: हाँ, उसी स्थान को गौमुख बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका और गीता जी का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और इस जानकारी के लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। फिर हम उनसे फिर कभी मिलेंगे अगले उसमें कार्यक्रम में, तब तक के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।